0: जो खा दे खाओ दे आइसक्रीम खाओ बाकी इलाज किलो बुढ़े अचो तो इन शाह सब ठीक होंगे
1: ओके दा ओके सो हिकड़ो बियो कॉलर असा शामिल क्यों पिया लेट्स सी हु इज द नेक्स्ट कॉलर असा जो लाइव कॉलिंग नंबर आ है 03000113488 डॉक्टर आखा लियाकत पठान साहब से मौजूद हैं जिनके तकरीबन होम्योपैथिक में 44 साल जो तजुर्बो है
2: और अगर अहद करने के बाद अपने
1: जी अस्सलाम वालेकुम
2: डालें और तुम्हारे दीन में तानाजनी करने लगे तो इन
1: जी जी गल है
2: दुश्मनों से जंग करो इनकी तस्मों का कुछ एतबार नहीं है अजब
3: नहीं
2: से बाज आ जाएं
4: भला
2: तुम ऐसे लोगों से क्यों ना लड़ो जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ निकालने का इरादा कर लिया और इन्होंने तुमसे
3: विदा
2: की ऐसे लोगों से डरते हो सो डरने के लायक तो अल्लाह है अगर तुम ईमान इनसे खूब लड़ो अल्लाह इनको
3: इन्हें
2: और
3: गरम करे
2: मोमिन लोग
3: थो पानी न पानी
1: वेलकम यूर वेलकम ऑलवेज सो हिकड़ो बियो कॉलर असां शामिल कंदासीं सेहत जी ॻाल्हि प्रोग्राम में असां जो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488 السلام علیکم
5: وعلیکم
1: السلام مساجد
3: اللہ شاہدین
1: केर था गलाओ था मशवरो के रोकन चाहिंदा हो
5: साईं बाबू असां जो अलू अबी ता अमन बे
2: दिला जो मथे
3: जो
2: मथे जो सूर न हो वने न
3: एली तबीयत खराब किया था केरा
5: असा
2: उना और अल्लाह जिस पर चाहेगा तुम लोग ये ख्याल करते हो बे आजमाइश छोड़ दिए जाओगे ऐसे लोगों को परखा ही नहीं जिन्होंने और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिल का काम नहीं आबाद करें
3: गरम जो समोसा पकौड़ा चिप्सा वगैरह
1: डॉक्टर साहब की क्लिनिक एड्रेस भी बुलाइंदो हलां सखर शहर में अथव आगा होम्योपैथिक क्लिनिक पुलिस हेडक्वार्टर चौक पुलिस लाइन सखर जिते ही सुबुह 10 खां शाम 5 वगे ताईं मौजूद हुंदा आहिनि जुमे ते इन्हनि जी क्लिनिक बंद हुंदी आहे फोन ते तव्हां हिन सां राबितो करणु चाहियो त नंबर आहे 03-26-22-00-440 काफ़ी मरीज़नि इन्हनि खां इन्हनि जी क्लिनिक आगा होम्योपैथिक क्लिनिक ते होम्योपैथिक इलाजु करायो आहे हुननि खे केतिरो बहितरु फ़ाइदो मिलियो आहे तव्हां उन्हनि जी ज़बानी उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधो ऐं सिहत जी ॻाल्हि प्रोग्राम में पूरे 9 वॻे ताईं असां सां गॾु
6: इर्शाद मंडल में ॿुधाईंदो आहियां अवां खे हुननि मरीज़नि जूं ॻाल्हियूं जेके आहे होम्योपैथिक क्लिनिक सखर तां इलाज कराईंदड़ आहिनि त असां दोस्त गॾु आहे हिन खां पुछंदासीं त डॉक्टर पठान साहब जिन खां जेका हिननि दवा वरिती आहे होम्योपैथिक जी हुन मां हिन खे केतिरो फ़ाइदो रसियो आहे असां
7: नालो
6: तव्हांजो انجنر صاحب کتھوں آیا تھا
4: سمرا پواری کچے میں ان کا
6: پروردگار شاہ تکلیف آدا
4: مادی جی
6: مادی تک
4: ہاں سے
6: اور کدے کا
4: کھڑو جو پڑ سال سال
6: بٹن سال ہاں
4: ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
6: ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
4: ہاں ہاں ہاں
6: ہاں ہاں ہاں ہاں
4: ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
6: ਦੇਂਦੋ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ
4: ਨਾ ਭਾਈ ਬਠਾ ਦੀ ਪੰਜਾ ਦੀਆਂ ਬਸ ਵਾਰੀ ਕੋਲ ਉਹ ਆਈ ਕਾਰ
6: ਨਹੀਂ ਅਰਸੇ ਕਾਇਆ ਤਕਲੀਫ
4: ਹਾਲ ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਹਾਲ ਸਾਲ
6: ਬਸ ਹਾਲ ਸਾਲ ਅੱਠ ਦੀ ਅਗੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਗਾ ਲਿਆਕਤ ਪਠਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾ ਦਵਾ ਵਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾ ਘਣੇ ਫਾਇਦਾ
4: ਇਸ ਇਸ ਅੱਠਾ ਨਾ ਪਈ ਜੀਓ
6: ਅੱਠਾ ਨਾ ਮਾ ਅਦੋ ਫਾਇਦਾ ਮਾਨੀ ਖਾਓ ਤਾਂ ਅਣਾ ਸਮ ਠੀਕ
4: ਖਦਮ ਸ਼ੀ ਜੀ ਹਰ ਸੇ ਅਨੰਦ ਜ਼ਾਇਦ ਹੋ ਕੇ ਆਸਪਾ
6: ਤੁਮਰ ਘੜੀਆ ਤਾਂ ਹੈ
4: 40 ਸੀ ਜੀ
6: 40 ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਭਰੇ ਤਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਈਦਾ ਉਹ ਲੈਂਗਨ ਮੇ ਰਤੂ ਠੰਦੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਭਰਦਾ
4: ਡਾਕਟਰ ਜਾਈ ਕੋ ਸਹੀ ਬਸ ਭਾਈ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਾਂ
6: ਸਾਦਾ ਚੰਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਣਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੋ
4: ਬਟ ਮੈਂ ਹਲਦੀ ਦਵਾ ਚ
6: ਬਟ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ
4: ਹਾਂ ਸਹੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ
6: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਸੇ ਆਪ ਜੀ
4: ਭਾਈ ਮਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ
6: ਮਾਣੋ ਤੇ ਕਿਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪੋਦਾ ਤੇ ਕੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਦੀ ਨਾ ਲੰਗਾ ਹੀ
4: ਅਸਾਈ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾ ਲਗੀ ਆ ਸਹੀ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ
6: سبحان اللہ اگر یہ چیک کر لو سکرت ہے میرے دوست کے ساتھ جو ہے میں نے جو ہے انا کا پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب یہ کہ پرشاد صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے کہ کترو فائدہ رسوا ہے وعلیکم السلام ادا نام تو ان شاء اللہ سارا صاحب کہہ رہا ہوتا صاحب کا کٹ کر رہا ہوں کہا ہوا ہے اسا بس کٹ کر
7: اگر تمہارے ماں باپ
6: کا تکلیف فائدہ تو شکر ہے کہ فون پہ تکلیف ماں کے نام جو سال ہوا ان کی دادی تکلیف ہوئی जैमें वो बेचारो घूमी नो सके कि डंगा बाहूँ जो कम नी कर टंगा टाली खड़ी अस कार के उतरे आया
7: साइन
6: डॉक्टर साहब को दवा थी से जी दवा मैं दिखारी पा पुछा भी न कें मैं पुछा कई पा बुदाई तो इनके ये तकलीफ है ये तकलीफ तो चुप बाकी गाल तुम सही आ चला से कर डॉक्टर साहब अस दवा दी जैं छोकर के बाहर वेटी उनके पियारी जी दवा पियारी टंग टाली खड़ी रोड़ी घर वी आयोमास पंज मिंट में चाय पी पा वॉशरूम में बहार घुम तो पे रेगाड़ तो टंगो टाली खी आया तू हाँ घुमंद सफा थी पंज मिंट में घुमे फिर दवा खाधई सखर में ॾेखारे जीअं रोड़ी पहुतोमास पंज मिंट चांहि पीती चांहि पाण वॉशरूम में घुमंदो पते पियो वरी रोड़ी वरी शाम खां वरी घोट वठी वियोमांसि रोड़ी खां 15 किलोमीटर पोइ मां वठी वियोमांसि हुते हिकु वॾो जलसो प्रोग्राम थियो जंहिंमें पाण घुमंदो पते नंढनि ॿारनि खे वठी हुते चांवर बि खाधई पुराणी डॉक्टर साहिबु झलियो जेको आहे न खाईंदा आहिनि तॾहिं वीचारे खाधा पर पोइ अलाह जे अलाह जे करम सां डॉक्टर जे दवाउनि सां असांखे सफ़ा मिली ऐं छोकिरो अॼु बि अचे माना सही घुमंदो अचे बाक़ाइदे हुनखे का तकलीफ़ न दवा पीए थो डॉक्टर साहिब चयो वठी ईंदा असां न वठी आया पोइ वरी मूंखे दोस्त इस्लामाबाद खां मूंखे चयईं मां चयोमांसि इहो मसइलो आहे डॉक्टर हिकिड़ो असांजो सखर में आहे डॉक्टर भलो था अचो पोइ मां हुनखे घुरायो इस्लामाबाद खां अॼु बि मां असां गॾु वेठो बि आहे उहो बि दवा वठी आयो अलास हिनखे सफ़ा मिलंदी तव्हां हुनखे भले पुछा कयो
8: तव्हां जेका ॻाल्हि ॿुधाई आहे त अञा सो जेको करश्मो थी वियो तव्हां चओ था टको टाली करे खणी आयासीं छोकिरे खे घणी उमिरि छोकिरे जी तकरीबन हुनजी 35 साल हुई 35 साल हुई उहो डॉक्टर साहिबु खयो दवा वरिते रोड़ीअ पहुतो दवा जो हिकिड़ो ई वज़न खाधे त घुमे हिकिड़ो ई वज़न पुतई बसि तकलीफ़ छा हुई हुनखे
6: तकलीफ़ साईं सूरु पियसि माथे में सूरु हुयसि तकलीफ़ जोड़नि में सूरु हुयसि पासनि में सूरु हुयसि संद सुखा पियासि माना
8: डॉक्टर साहिबु घणा ॾींहं जो इलाजु ॾिनो तव्हांखे दवा
6: 15 ॾींहं मूंखे इलाजु ॾिनई मां हिकु ॾींहुं
8: اسلام آباد سے کیا تکلیف ہے آپ کو
9: مجھے L4-5 की तकलीफ और मैदे की तकलीफ पूरे टांग में दर्द भी पेन ज्यादा होता है।
6: आपको किसने बताया कि डॉक्टर आगा लियाकत पठान साहब सखर में बैठे
9: हैं? जानते सखर में मेरे दोस्त हैं शाहनवाज, तो इनके एक साले को आराम आया था तो इन्होंने मुझे बताया था, उनके साथ में आए डॉक्टर
6: कटपर साहब हैं आप?
9: जी जी हाँ, शाहनवाज कटपर साहब हैं।
6: पहली मरतबा आए
9: जी? मैं पहली मरतबा।
6: दवाई ली है डॉक्टर साहब?
9: जी जी, मैंने आज दवाई ली है।
6: क्या कहते हैं डॉक्टर साहब?
9: सब कह रहे हैं इंशाल्लाह फायदा हो, अल्लाह खैर करे।
6: डॉक्टर साहब जी असांखे दुआऊं आहिनि, असां सभु अॼु बि दुआ था कयूं, असांखे बि शफ़ा मिली आहे इनशाला, ॿियनि खे मरीज़नि खे बि डॉक्टर साहब दुआ कंदासीं, कंदा उहे बि कंदा जेके ॿिया बि ईंदा, असांखे दुआऊं असां डॉक्टर साहिब कंदासीं। दुआ गॾु तव्हांजो छोकिरो जेको आहे सही थी वियो डॉक्टर साहिब दवा में, तव्हांजे दोस्त इस्लामाबाद खां हुया, इहो बि अलाह कंदो सजा बि मिलंदी हिनखे।
10: آغا لیاقت علی خان پٹھان ڈی ایچ ایم ایس سنٹ آر ایچ ایم بی اسلام آباد 44 سالن جی وسیع تجربے سان ہر قسم جا اعصابی امراض جوڑن جو سور میدے میں جلن گیس بدہضمی تیزابیت گردن جی پتھری بواسیر بے اولادی وارن جو کرن گنج پن فالج خارش بین مختلف صحت جی تکلیفن لائے ماہرانہ ہومیوپیتھک صلاح مؤثر علاج فراہم کرے رہا ہیں آغا ہومیوپیتھک کلینک سکھر پولیس ہیڈ کوارٹر چوک پولیس لائن سکھر टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 03-26-22-00-440

डियर सर सवाल है मरीज इंतकाली मुद्दे जिन डॉक्टर आजा लियाकत पठान साहब ने इनका होम्योपैथिक इलाज कराया हुआ है उनके केतिरो बेहतर फायदो मिलियो उन्हें जी गाली में अंदाजो लगाए सके हम तो जिकर अहां ख्वाहिश रखो था इन होम्योपैथिक तरीका है इलाज के आजमाने जी तजी सखर शहर में डॉक्टर साहब की क्लिनिक आए आगा होम्योपैथिक क्लिनिक पुलिस हेडक्वार्टर चौक पुलिस लाइन सखर सुबह नई खां शाम पंजे बजे तक टाइमिंग अथन जुमे इन क्लिनिक बंद होंगी है तुम फोन से भी इन रो करो था।

0: टॉपिक जी तरफ पाण अचूं पिया, जेका जोड़नि जी बीमारियूं आहिनि, इन जा कहिड़ा सबब आहिनि?
1: पहिरियां वॾे में वॾो सबब थी आहे बीमारी ख़ानदानी हूंदी आहे, माना मौरूसी थींदी आहे। अगरि ख़ानदान में कंहिंखे आहे त हुनजी औलाद जल्द थी सघे। हिन खां पोइ मोटापो, मोटापे जी करे बि थी सघे।

0: और पीठे
1: कहा जाएगा कि ये वही है। ठीक
2: है,
1: अल्लाह
0: के उस रोज से उसने आसमान और जमीन को पैदा किया।
1: जी
0: अल्लाह की किताब में साल के
2: 12 महीने
0: उनमें से 4 महीने अदब के हैं, यही दीन का सीधा रास्ता है। इन महीनों में किताब से अपने आप पर जुल्म न करना और तुम सब के
3: सामने गरम चीनी न खा रहे हो,
0: जैसे वो सब के
3: सामने के पानी आ रहे
0: उनके साथ है।
3: शरबत जेको आहे पंज बार मिलंदी हुई शहर में वठी बचम चावल जा गिलास पाणी में मिलाए सुठो छा पीआरे।

बरादरी ईरान बाबत बिटो मयार खत्म करे पुरमन मकसदन लाए एटमी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल ईरान जो हक है एटमी हथियार तो इसराइल वट आन ईरान त पाबंदी छो आन ईरानी सदर खिताब दौरान अमरीकी नुमाइंदो वॉकआउट करे वो न्यूयॉर्क में टे अकड़न की कोशिश से ईरान ए अमरीका में गाल अमरीकी सदर गाल तामीरी करार दिए छो अमरीका के खास एलची स्टेविटकोफ है तो जनरल असेंबली इजलास के मौके से टे अकड़ वसीले ईरानी वफद से डिगी मुलाकात कई वही टे अकड़ सजो ढी धुरन में न्यापन की डेवट कराइंदा रहा गाल दौर कामयाबी से मुकम्मल थो उम्मीद तो ही दौर तामीरी और उम्मीद पैदा कदड़ होंद ईरानी परदेही तर्जुमान इस्माइल बकई चो है तो ईरान पैं मौकुफ़ ए शर्त अमरीका ती पहुंचाया ईरानी शर्तन में समूरन महाजन से जंग खात्मो अमरीकी कार्रवाई रोकण सामुंडी नाकाबंदी मुआशी जंग जो खात्मो ए मुंजमद असासन की बहाली शामिल है अमरीकी सदर ट्रंप के तकरीर दौरान ईरानी वफद यूएन इजलास में वॉकआउट किया हो ट्रंप चो तो मुस्तकबिल में ईरान से एक बी मुलाकात भी तय कई है विच मुदम चूंड का पैरी या पोई ईरान से का डील थी वेंदी पीटीआई के लॉन्ग मार्च का अग इस्लामाबाद कंटेनर से बंद वफाकी राजधानी के दाखिली रस्तन से 1000 कंटेनर्स मौजूद शहर में भी 1000 कंटेनर्स पहुंचाया वह इस्लामाबाद में 16000 एहलकार लॉन्ग मार्च की रस्ता रोक कंदा जरिए मूजिब हुकूमत जो प्लान है तो मुजाहरीन के इस्लामाबाद में दाखिल थियन नो वो जर मुजाहरीन दाखिल भी थे तो डी चौक तई पहचन नो वो बे पास समूरे पंजाब में कलम 144 लागू रेंजर्स तलब मोटरवे M2 से इस्लामाबाद लाए माल बरदार ए वन गाड़ियों की दाखिला से पाबंदी M14 ए पिशावर मोटरवे अज का ट्रैफिक लाए बंद पंजाब सरकार पारा 27 सितंबर तई मोबाइल ए इंटरनेट सर्विस सुस्त करने की दरख्वास्त पंजाब के घरू खाते वफाकी सरकार के खत लिखी छो केपी ए पंजाब के सरहदी शहर अटक के दाखिली रस्तन से रेती बजीर से भरल बोरियो ए कंटेनर्स पहुंचाया वह इस्लामाबाद सोमनाथ ना है सोची समझी अचो कुछ वी न पर कुछ जी वापस हलिया वा बचाव वजीर जी पीटीआई के बारे में ख्वाजा आसिफ चो है तो हर बे ढी वफाक से चढ़ाई की तैयारी कई वी है खैबर पख्तूनख्वा के 13 साल भी हिसाब दियण पव तारीख बुधाए थी तो सोमनाथ से हमला छो थ हुआ सोमनाथ से 17 हमला थे हुआ तुम गण्यो तो केतरा हमला थी व्या केतरा रहल खैबर पख्तूनख्वा सरकार इस्लामाबाद दा चढ़ाई कर रही है उनकी हालत वह है जो पुलिस अचे तो दर का फरार खट के हेठा लिखी वन तबाही ए बर्बादी की सियासत कर रहा है सो समारे वफाकी वजीर पारा पेशावर में तकरीब के खिताब दौरान पीटीआई से तनकीद अता तारा चो तो मानून के कूड़े बयाने पया लगाए जेन साजी कई वही कोहाट ए हिंगू में सूरताल खराब है केपी सरकार जहाँ जिम्मेवार टिकटॉक ठाने में रुदल आज सियासत जो मकसद आवाम के विच में रहन ए सदन मसला समझना है असा कें हमले आवर नी रहा पर अमन एहतजाज कर रहा हुकूमती टोलो जो बयान ठा रो है उनको बंदोबस्त करो पव पीटीआई चेयरमैन जो वफाकी वजीर की तनकीद के जवाब बैरिस्टर गोहर चो है तो चाहूँ तो मार्च भी थे वो पुरमन हो को हुकूमती टोलो लॉन्ग मार्च के हवा से प्रोपेगेंडा कर रो है तो असा इदारे हमले आवर थी असा खबर है तो कैंसा गलो है गाल घुर्जन पर बदकिस्मती से गाल बोल नी रही है हुकूमत गाल रुगो आश कई उन में अमली तौर पर कुछ ना है महमूद खान चकजई राजा नासर अब्बास ए पीटीआई क्यादत गाल तैयार हैं हुकूमत में मसला खत्म करने की का भी सोच ना है गवर्नर अज का अगे ही केपी में गवर्नर लगल है असा वाजिब करूँ था लॉन्ग मार्च पुरमन होंद पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खिलाफ़ नफरत ए चिड़ डियारींदड़ तकरीर से नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इस्लामाबाद केस दाखिल कर छो केस के मतन में चो है तो नफरत ए चिड़ डियारींदड़ तकरीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ अकाउंट्स से हलई वही जुनैद अकबर सरकारी मिल्कियतों के नुकसान पहुंचाने की धमकी दिनी केस में शामिल तकरीर के मतन मूजिब जड़ी तरह सोमनाथ से हमला थे अड़ी तरह इस्लामाबाद से हमला थन्दा
मूं चयो त तव्हां बानी सां मुलाक़ात करायो, उन सां मुल्क खे मसइलनि मां कढी सघिजे थो। सेनेट में अपोज़िशन लीडर राजा नासिर अब्बास चयो आहे त वासे खे घुरूं था त बानी सां मुलाक़ात जो नियापो न ॾिनो वियो आहे। जेकॾहिं बानी सां मुलाक़ात जो नियापो कंहिंखे ॾिनो त असां ताईं न पहुतो आहे। पंजाब असेंबली मेंबर्स खे गिरफ़्तार कयो वियो, छा हाउस जे कस्टोडियन स्पीकर खां इजाज़त वरिती वई? जेकॾहिं इजाज़त वठी गिरफ़्तार कयो वियो त उहो पार्लियामेंट ते हमिलो आहे। जेकॾहिं इजाज़त खां सवाइ गिरफ़्तार कयो वियो त खेनि आज़ादु कराइणु घुरिजे। लोड शेडिंग बाबति सिंध असेंबली जे ख़ुसूसी कमेटी जा मेंबर्स कराची में बदतरीन लोड शेडिंग ते काबड़ियल, मुतमिन कंदड़ जवाब न ॾियण ते के इलेक्ट्रिक जे ॿिनि आफ़िसर खे इजलास मां कढी छॾियो। संदनि ख़िलाफ़ु मामूली रिथ आणण जो फ़ैसिलो। कमेटी जे मेंबर्स चयो त के इलेक्ट्रिक नुमाइंदनि 3 कलाक ज़ाया करे छॾिया। शहर में हिकु पासे बदतरीन लोड शेडिंग आहे त ॿिए पासे हिकु बिल जे अदम अदायगी ते सॼे इलाइक़े जी बिजली बंदि कई वञे थी। के इलेक्ट्रिक नेपरा जा कानून बि न मञे रही आहे। इजलास कमेटी जे चेयरमैन फयाज़ भुट चयो त ईंदड़ इजलास में बि मुतमैन कंदड़ मोट न मिली त के इलेक्ट्रिक ऑफिस जे हेठां आॾो तंबू लॻाए इजलास कयो वेंदो। सांगण में म्यूनिसिपल इंतिज़ामिया जी संकी डायरी जे नतीजे में खुलियल गटर नाला ॿारनि लाइ रकास बणियल, वधीक हिकु ॿियो निंगर खुलियल नाले में किरी पियो, शहरनि बचाए वरितो। 4 वरनि जो रमज़ान ख़ासि कली शहर जे कटर नाले में किरी पियो। दाहूं किण ते वारसनि ऐं शहरनि खे नाले मां कढी बचाए वरितो। वाक़िए ते इलाइक़े वासियुनि में कावड़ जी लहर। रहवासियुनि चयो त म्यूनिसिपल इंतिज़ामिया बेहसी जो मुज़ाहिरो कंदे मासूम ॿारनि जूं ज़िंदगियूं दाह ते लॻाए छॾियूं आहिनि। खुलियल गटर नाला फौरी बंदि न कया विया त वरी को ॿियो अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश अची सघे थो। कुझु ॾींहुं अॻु 7 वरनि जे मरियम ख़ासि कली खुलियल गटर नाले में किरी ॿुॾी फौत थी वई हुई। ॿिए पासे नाबशाह जे एडी ख्वाजा टाउन में निंगर खुलियल गटर में ॿुॾी फौत, वारसनि मूजिबि 3 सालनि जो मुबशर मस्तो हुई। सुबुह जो घरां निकितो त न मोटियो, सॼो ॾींहुं ॻोल्हा कई पर किथां बि न पतो पियो। शाम जो हिकु वीरान घर जे गटर मां निंगर जो लाश हथ आयो आहे। वारसनि ऐं शहरनि पारां म्यूनिसिपल अमलदारनि ख़िलाफ़ु केस दाख़िल करे कार्रवाई जो मुतालबो। मलीर जे इलाइक़े शाह लतीफ़ टाउन में हथियारबंदनि जी फायरिंग जे नतीजे में पुलिस अहलकार ज़ख़्मी। पुलिस जो चवणु आहे त फायरिंग में सिक्योरिटी 1 जो अहलकार फरमानुल्लाह ज़ख़्मी थी पियो। ज़ख़्मी अहलकार अॻूणे गवर्नर कामरान टेसोरी जो सिक्योरिटी ते मुक़ररु आहे। शुरूआती तौर ते वाक़ियो फुर जो नतीजो लॻे थो। ॿिए पासे घरू वज़ीर वाक़िए जो नोटिस वठंदे SSP मलीर खां रिपोर्ट घुराए वरिती। ऐं रतु तुर भरिसां ॻोठु अली बेग कोडराणी में निंगर पाणी जे तलाह में ॿुॾी फोत। 11 वरनि जो मेराज कोडराणी तलाह में विझी रहियो त ॿुॾी वियो। वारसनि ऐं ॻोठाणनि गॾियल कोशिश सां लाश ॿाहिरि कढियो। मिया साहब भरिसां ॻोठु आमिल खुआरो में 3 सालनि जो निंगर पाणी जे तलाह में ॿुॾी फोत। दिलशेर खुआरो रांदि खेॾी रहियो हो त तलाह में किरी पियो। निंगर अस्पताल पहुचण खां अॻु रस्ते ते दमजी छॾियो हो।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ंगन ताईं पहुच खां रोकियो वञे पियो पंहिंजे वतन जे दिफ़ा लाइ कंहिंजी इजाज़त जी ज़रूरत न आहे. ईरानी सदर चयो त आलमी बिरादरी ईरान बाबति ॿिटो मयार ख़तमु करे पुरमन मक़सदनि लाइ एटमी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमालु ईरान जो हक़ आहे. एटमी हथियार त इसराइल वटि आहिनि, ईरान त पाबंदी छो आहिनि? ईरानी सदर ख़िताब दौरान अमरीकी नुमाइंदो वॉकआउट करे वियो. न्यूयॉर्क में टे अकड़नि जी कोशिशुनि सां ईरान ऐं अमरीका में ॻाल्हियूं. अमरीकी सदर ॻाल्हियुनि खे तामीरी करार ॾेई छॾियो. अमरीका जे ख़ासि एलची स्टेविटकोव चयो आहे त जनरल असेंबली इजलास जे मौक़े ते टे अकड़नि वसीले ईरानी वफ़द सां डिघी मुलाक़ात कई वई. टे अकड़ सॼो ॾींहुं धुरनि में ॾियापनि जी ॾे वठि कराईंदा रहिया. ॻाल्हियुनि जो हीउ दौरु कामयाबी सां मुकमल थियो. उमीद त हीउ दौरु तामीरी ऐं उमीद पैदा कंदड़ हूंदो. ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान पंहिंजो मौक़ुफ़ ऐं शर्त अमरीका ताईं पहुचाया. ईरानी शर्तनि में समूरनि महाज़नि ते जंग ख़ात्मो, अमरीकी कारवायूं रोकणु, सामूंडी नाकाबंदी, मुआशी जंग जो ख़ात्मो ऐं मुंजमद असासनि जी बहाली शामिल आहे. अमरीकी सदर ट्रंप जे तकरीर दौरान ईरानी वफ़द यूएन इजलास मां वॉकआउट कयो हो. ट्रंप चयो त मुस्तक़बिल में ईरान सां हिकु ॿी मुलाक़ात बि तय कई आहे. विच मुदम वारनि चूंडनि खां पहिरीं या पोइ ईरान सां का डील थी वेंदी. पीटीआई जे लॉन्ग मार्च खां अॻु इस्लामाबाद कंटेनर सां बंदि. वफ़ाक़ी राजधानी जे दाख़िली रस्तनि ते 1000 कंटेनर्स मौजूदु. शहर में बि 1000 कंटेनर्स पहुचाया विया. इस्लामाबाद में 16000 अहलकार लॉन्ग मार्च जी रस्ता रोक कंदा. ज़रियुनि मूजिबि हुकूमत जो प्लान आहे त मुज़ाहिरीन खे इस्लामाबाद में दाख़िल थियणु न ॾिनो वेंदो. जेकॾहिं मुज़ाहिरीन दाख़िल बि थिया त डी चौक ताईं पहुचणु न ॾिनो वेंदो. ॿिए पासे समूरे पंजाब में कलम 144 लागू. रेंजर्स तलब मोटरवे M2 ते इस्लामाबाद लाइ माल बरदार ऐं वॾियुनि गाॾियुनि जी दाख़िला ते पाबंदी. M14 ऐं पिशावर मोटरवे अॼु खां ट्रैफिक लाइ बंदि. पंजाब सरकार पारां 27 सितंबर ताईं मोबाइल ऐं इंटरनेट सर्विस सुस्त करण जी दरख़्वास्त. पंजाब जे घरू खाते वफ़ाक़ी सरकार खे ख़त लिखी छॾियो. KP ऐं पंजाब जे सरहदी शहर अटक जे दाख़िली रस्तनि ते रेती बजरी सां भरियल बोरियूं ऐं कंटेनर्स पहुचाया विया. इस्लामाबाद सोमनाथ न आहे, सोची सम्झी अचिजो. कुझु वठी न पर कुझु ॾींहुं वापसि हलिया वेंदा. बचाव वज़ीर जी PTI खे वार्डिंग ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त हर ॿिए ॾींहुं वफ़ाक ते चढ़ाई जी तयारी कई वेंदी आहे. ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे 13 सालनि जो बि हिसाब ॾियणो पवंदो. तारीख़ ॿुधाए थी त सोमनाथ ते हमला छो थिया हुआ. सोमनाथ ते 17 हमला थिया हुआ. तव्हां ॻणियो त केतिरा हमला थी विया ऐं केतिरा रहियल आहिनि. ख़ैबर पख़्तूनख़्वा सरकार इस्लामाबाद ॾांहुं चढ़ाई करे रही आहे. हुननि जी हालति उहा आहे जो पुलिस अचे त पोएं दर खां फ़रार थींदा आहिनि ऐं खट जे हेठां लिकी वेंदा आहिनि. उहे तबाही ऐं बर्बादी जी सियासत करे रहिया आहिनि. सुसमारे वफ़ाक़ी वज़ीर पारां पिशावर में तक़रीब खे ख़िताब दौरान PTI ते तनक़ीद. अता तार चयो त माण्हुनि खे कूड़े बयाने पोयां लॻाए ज़हन साज़ी कई वई.
4: हो तो आवाज भी सिंध की है. GAFM 88 नेटवर्क. GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: काबंदी मायशी जंग जो खात्मो ऐं मुंजमद असासन जी बहाली शामिल आहे. अमरीकी सदर ट्रंप जे तकरीर तुरार ईरानी वफद यूएन इजलास मां वॉकआउट कयो हो. ट्रंप चयो त मुस्तक़बिल में ईरान सां हिकु ॿी मुलाक़ात बि तय कई आहे. विच मुदम वारनि चूंडनि खां पहिरीं या पोइ ईरान सां का डील थी वेंदी. पीटीआई जे लॉन्ग मार्च खां अॻु इस्लामाबाद कंटेनर सां बंदि. वफ़ाक़ी राजधानी जे दाख़िली रस्तनि ते 1000 कंटेनर्स मौजूदु. शहर में बि 1000 कंटेनर्स पहुचाया विया. इस्लामाबाद में 16,000 अहलकार लॉन्ग मार्च जी रस्ता रोक कंदा. ज़रियुनि मूजिबि हुकूमत जो प्लान आहे त मुज़ाहिरीन खे इस्लामाबाद में दाख़िल थियणु न ॾिनो वेंदो. जेकॾहिं मुज़ाहिरीन दाख़िल बि थिया त डी चौक ताईं पहुचणु न ॾिनो वेंदो. ॿिए पासे समूरे पंजाब में कलम 144 लागू. रेंजर्स तलब मोटरवे लाइ माल बरदार M14 ऐं पंज खां ट्रैफ़िक लाइ बंदि. सरकार पारां 27 सितंबर ताईं मोबाइल ऐं इंटरनेट सर्विस सुस्त करण जी दरख़्वास्त. पंजाब जे घरू खाते वफ़ाक़ी सरकार खे ख़त लिखी छॾियो. केपी ऐं पंजाब जे सरहदी शहर अटक जे दाख़िली तबजीर सां भरियल ॿोरियूं ऐं कंटेनर्स पहुचाया विया. अचो कुझु वठी न पर कुझु ॾेई वापसि हलिया वेंदा. वज़ीर जी पी बजाज

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: ये देखे ये देखे ये लोग हैं, ये देखे ये देखे ये देखे हे भाव मानू ही ने ए दिसो ए ता दिसो था मानू ही ने मथा भितू टपी आया है ने ए दिसो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ये देखे, ये लोग हैं, ये देखे, ये देखे। ये देखे
1: किरण,
0: हे भाव मानू ही नहीं, ये दिसो, ये ता दिसो था मानू ही नहीं, मथा भितू टपी आया है ना, ये दिसो, हाँ ये दिसो, हाँ ये मानू है ना, ये बुटू बधी आया है, ये
2: नकाब पोश आया है दिसो,
0: यो यो को भी तरीको ना है, मुझे भाई यो को भी तरीको ना है, मोबाइल यो छा यो सुठो कमा, हे दिसो हथियार, हेरिसो हथियार, हे मानू दिसो, हे राज चार था थे ना, हे से नंढा मासूम बार है ना, हे इनन जो तरीको आ, हेरिसो।

0: सिंध में पुलिस गर्दी इंतहा ते पहुची वही। कलमदनी भी पुलिस गर्दी खां बची न सकिया। अमन अमान बाबत खबरू आवाम ताई पहुंचाण भी डोहो बणजी वयो। रादड़ में केटीए न्यूज जे रिपोर्टर मुजफ्फर गोरड़ जे घर ते रात देर सां पुलिस जे धाड़ेलन जिया चढ़ाई। बिना वर्दी अहलकारन पारां चादर ऐं चार दीवारीअ जो तकदुस पाए माल न्याणियुनि सां बदतमीज़ी। दरवाज़ा बि टोड़े छॾिया। साफ़ ई मुज़फ्फर गोरड़ जे घर ते चढ़ाई ख़िलाफ़ कलमदड़नि जो एहतजाज। ज़िमेवार पुलिस अहलकारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे कार्रवाई करण जो मुतालबो। जसकम चेयरमैन सनान कुरैशी 27 सितंबर ते एहतजाज जो सॾु ॾेई छॾियो। सनान कुरैशी चयो आहे त सिंध जे वादत ख़िलाफ़ थींदड़ ॻाल्हियुनि खे रद्द कयूं था। सिंधु जे किनारनि ते गॾु थी एहतजाज कयो वेंदो। करोड़े सिंधी समुंड, दरिया, ज़मीनूं, ॿेला, जबल बचाइण लाइ रोडनि ते निकरंदा। नौशेरो फेरोज़ी अदालत में अॻोणे वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई ऐं मसरूर जतोई समेत ॿियनि जे ख़िलाफ़ 8 केसनि जी ॿुधणी। मसरूर जतोई पेश। मुर्तज़ा जतोई तबियत ख़राब हुअण सबबु पेश न थियो। मोरो में घरू वज़ीर ज़िया लंजार जे घर ते हमले वारे केस जी बि ॿुधणी थी। खैरपुर भरिसां घरू अणबण तां जवाबदार ज़ाल खे क़तल करे छॾियो। पाण खे बि मारण जी कोशिश। ॻोठु कोड़ो मेतलो में जवाबदार ग़ुलाम सरवर मेतलो 4 ॿारनि जे माउ मरियम खे क़तल कयो। जवाबदार ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे बि गोली हणी छॾी। गणती जोगी हालत में अस्पताल दाख़िल। पुलिस मूजिबि ग़ुलाम सरवर मेतलो जूं 2 शादियूं थियल आहिनि ऐं हुन जी नंढी ज़ाल सां मुंहमारी थी हुई। मलिर जे लांडी फ्यूचर कॉलोनीअ में मिल्कियत जे तकरार तां भाउ हथां भाउ क़तल। जवाबदार विजयदार तेज़ धार औज़ार सां भाउ विनायत ख़ान खे क़तल करे फ़रार थी वियो। मीरपुर भटोरो जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में पाणी जे खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। महमूदा वाह, गगाड़ वाह, फतेह वाह, जाफ़र वाह, जोया वाह ऐं छंडण शाख में पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि एहतजाज कयो। आबादगारनि चयो त आपाशी खातो पाणी विकिरो करे रहियो आहे, पोछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे। गुपचाणी भरिसां ट्रॉलर ऐं कार में टकर लॻण सबबु पीउ पुटु फोत। अलीआबाद स्टाप वटि हादसे जे नतीजे में कार सवार ग़ुलाम हैदर मंगसी ऐं मुनवर मंगसी फोत थिया। ऐं चीन जे सूबे हेंगज़ो में पार्किंग प्लाज़ा खे बाहि लॻी वई। हज़ारे गाॾियूं सड़ी रख थी वियूं। गाॾियुनि में अक्सरियत इलेक्ट्रॉनिक गाॾियुनि जी शामिल आहे।
1: अॼु ई टपाल मेज़बान ख़रीद करियो। व्हाट्सएप ते जमालो लिखी 02111182725 ते मोकिलियो। पैक जो 5 अंगनि वारो मुनफ़रिद कोड दाख़िल करियो, पोइ पंहिंजी मालूमात मोकिले प्रोग्राम में शामिल थियो।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।

वक्त हालतूं ऐं वाकिया मुसलसल तब्दील थींदा रहनि था। मुस्तकिल हुजे थी सिर्फ़ तब्दीली। हर पल तब्दील थींदड़ वाकियनि जा नवां पहलू, वसी ऐं गहरो नुक़्ता नज़र, सिर्फ़ इनसाइट विद नाज़िरा मीर सां।

0: पाकिस्तानी सियासत जो बेड़ो वफाक जो साहिल कौमी धारा मुल्की मईशत जो घुमंदड़ फिरंदड़ थी थो सूबाई असेंबलियों का आला ऐवान तीन पावर कॉरिडोर में फैसला थी रहा है असानी जरात सनत असानी अफरादी कुवत असा ठाइंदी मजबूत पाकिस्तान इक्तसादी बहरानन की आड़ में जन्म वी रहा वाशी तरक्की जा ख्वाब सियासतदान की चाल है ब्यूरोक्रेसी जो हाल है आलमी मंजरनामो तब्दील थी रो है जडे खबरू सुर्खियों बढ़ी वन तबसर तजियन में निकरंदा सोच जा नवा रुख एक आम पाकिस्तानी के सवाल जो अस बणजदासी
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों की बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों की बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। तमाम खूबसूरत मासूम ही सुनी समातन के मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल दुआओं के संबंध है, चाहते की बारिश और खजानों के साथ दुआएं पल से पल तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नीचे जागते सुनी से आसमान तक जिंदगी से मौत से खुशी तक दिल से दिल तक और जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकर नैरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जनाब मजे मजे के हैं जनाब यहाँ पर प्रोडक्ट जो कि आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं या फिर आप हमेशा के लिए हसीन बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर हाजिर खिदमत हो चुके हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं जनाब इनका क्या काम है और किस तरह से आप इस्तेमाल करने वाले हैं, किस तरह आपको फायदा मिलने वाला है, ये तमाम बातें इस प्रोग्राम में आप लोगों को जानने को मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले तो उसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताएं तो जरा आप लोगों को रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जितनी भी खूबसूरत सी समात हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं सो लिसनर्स द रीजन टू द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। सो यस जल्दी जल्दी से रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ प्रोग्राम में फन करने के लिए और खूबसूरती के राजों को जानने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंतकीफ हालत है, कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद अन शदीद इनके बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली है। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे आपका हमारा साथ होगा जनाब पूरे पूरे 3 बजे तक। और ये जो पूरी पूरी 3 बजे तक हमारा साथ आप लोगों के साथ रहने वाला है ये डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से होने वाला है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावज ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को बताएंगे और इस तरह से बताएंगे कि भाई आप लोग समझ जाएं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ये किस तरह से आपकी स्किन के ऊपर वर्क करते हैं, किस तरह से आपकी खूबसूरती का ख्याल रखते हैं और किस तरह से आप सब लोगों की स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आप लोग हमारे साथ मौजूद बिल्कुल जी बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सभी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त एक गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर 446 उल्की संभालने का काम करेगी भाई जान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की संभाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आगे से प्रोग्राम करते हैं और आगे से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत ही प्यारे से कसीदे के साथ। तो बहुत प्यारा सा कसीदा हमारे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में होगा प्ले, उसके बाद जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होंगे तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

जी क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कसीदा कि आप लोगों के साथ मिलकर हमने एंजॉय किया। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए हाजिर खिदमत है जनाब। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जल्दी से बताइए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आपको कैसा रिजल्ट मिला है, और साथ ही साथ अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो मुझे बताइए जल्दी से कब कब इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हुए या फिर अभी तक आप हमारी लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर पर भी मिलनी चाहिए। आप बस जाएं अपने करीबी जनरल स्टोर से और वहां से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट नाम लेकर तलब करें। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप किस तरह से अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराएंगे ये बिल्कुल आप लोगों को बताएंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये तो बताएं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनने वाले हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, कैसी आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहली जो बात है वो ये कि भाई आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है, सवाल बताते हैं उसके बाद आप लोगों को बताते हैं आप हमारे प्रोग्राम में शामिल किस तरह से होंगे। तो आज के प्रोग्राम के सवाल की बात की जाए तो आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे बताइए वो क्या है जो साल में एक बार खरीदते हैं मगर उसे पूरा साल इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ जी, गरीबी की इंतहा हो गई आप मुझे बताए कि वो क्या है जो साल में एक बार हम खरीदते हैं लेकिन उसे पूरा साल ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ हाँ जी, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, तो मुझे बताएं ये क्या हो सकता है। और साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं तो ये लाड़का ना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। जैसे आप सर्च करेंगे तो आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, वहाँ पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। पोस्ट को शेयर किया करें लाजमी और लाइक किया करें ताकि भाई हमारी पोस्ट जो है ना बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और बहुत सारे लोग जान सके कि मार्केट में उनके लिए भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं। सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं भाई, ये सबके लिए है। जितना भी मानो असांके बुधन था, जिते जिते मुझे आवाज बने तो हर एक मानू जला डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है। एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जेके आए ना उन्हें अवां की मिली थी जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश, ये वो प्रोडक्ट मार्केट में इन नाहन अगर दाम परचेज करें चाहिए था तो बिल्कुल दाम परचेज करे सको था। ऑल स्किन टाइप जरा आए हर एक माण्हू इन खे लगाए सके, तो यानी कि अगर तुम मर्द हज़रात आयो तमा खवातीन आयो हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे सके। तो यस जनाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और अपनी खूबसूरती में जरा इजाफा लाने वाले। और जी यहाँ पर हमारे साथ आप लोग मौजूद हैं, आप लोगों के फीडबैक से ही क्या कह रहे हैं। यहाँ पर अलारिना भाई हमें कश्मीर से सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं, अलारिना भाई आपको वेलकम कहते हैं। फरवा हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय आपी, तमा की आयो, तमा जी तबीयत हानी की है, होप यू आर फाइन एंड वेरी वेल। यस मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं। अब्दुल जी कैसर हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, आपको वेलकम कहते हैं अब्दुल जी कैसर। और नजर मोहम्मद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, इन मौला इस्लाम मदद, आप हमें मटियारी से सुन रहे हैं, वेलकम हो गया आपका। और निजाम भट्टी कादरी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, गोट दातो भट्टी मटियारी खान निजामदीन भट्टी कादरी तवा जो मोहब्बत मान भा तवा के बिचौंदा भली करे आया। और कहते सबनी फकीरन आशिकन परवानन दस्तगीरन मुरीदन के हजरत सैयदना गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अनहाजी यारी शरीफ मुबारक हो जी। ओके अच्छा, फरवा गुल कहती आप ही अर्ज किया है, एक शख्स मैंने देखा है आईने में, खफा दुनिया से है और बात मुझसे भी नहीं करता, राजी करें बाबा, इस इंसान को राजी करें। और कहते हैं आज गाने की फरमाइश मां दिसां दी गाना हलाण जी कोशिश करना सी। और निजाम भट्टी भाई तां जो मोहब्बत हुआ तां साने प्रोग्राम के पसंद कयो पया। और हमारे साथ हैं जी जीशान, जीशान रेडियो नेटवर्क ऑफिशियल से हमारे साथ कहते हैं लाड़कानी खां तां जो प्रोग्राम बुधा पयो, थैंक यू वेरी मच जीशान भा, तां जो मोहब्बत हुआ है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवां के हर जगह ते मिली रही है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इहो ही कमाल आए बाबा, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवां जे खूबसूरती में इजाफो आने थी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवां जे चेहरे की चमकाई थी, चाहे मर्द हज़रात आए हो चाहे तमा खवातीन आयो, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम फायदे उठी सके थे। और जी आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए वो क्या है जो हम एक मर्तबा खरीदते लेकिन उसको पूरा साल ही हमें यूज करना पड़ जाता है। और वसीम अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, फहीम शेख हमारे साथ कहते अरे लाड़काना, अरे लाड़काना, तो मैं रहन था मोजा अबाना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, कहते अदा केड़ा हाल आयन खुश आयो, सफा चाक सलेट कलम गाड़ी में सजी असां अची वियासीं प्रोग्राम ते लाजवाब आई हमेशा जी हां तमाम वांगुरु कल अदा शाम वारे प्रोग्राम में
में मुखे कम हुयो उन करे अध प्रोग्राम में हलियो वयो होस का गाल कोने का गाल कोने जाकिर हुसैन कोरी हमारे साथ ही गोठ करम खान नजामाणी नवाब शाह से सही जी जाकिर हुसैन कोरी मंजूर अली कोरी मुश्ताक अहमद नजामाणी उस्ताद मौला बख्श लाखो उस्ताद शफी मोहम्मद रेडियो मिस्त्री और वालेकुम अस्सलाम जी मौला अस्सलाम अदर कहते हैं आप भाइयों को सबको वेलकम कहा जाता है हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम में और खूबसूरती की दुनिया में आप भी जनाब कदम रख सकते हैं और आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं जी ये अस्सलाम वालेकुम आपी सिद्रा क्या हाल है आपके आपका शो जबरदस्ती आज स्कूल नहीं गई तो सुन रही हूँ आपको और ओएसटी सुनाइएगा डेडिकेट आपको और मेरी फैमिली को मीरपुर खास से रुखसार मरी हमें सुन रही हैं बहुत शुक्रिया प्यारी आपको वेलकम कहते चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम बेटा सिडो की आयो खुश आयो अम्हा विथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा गड आ सफा मजे में आया पांजा हाल बुधायो और वसीम अली कहते हैं कि सिस्टर सॉन्ग जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से मां कोशिश क्या थी तांजू फरमाइशों हलाइना सी और रुखसार मरी कहती है कि आपको भी हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे आमीन बहुत शुक्रिया मेरी जान अबू हनीफ अल बलोची हमारे साथ कहते हैं कि तुझे कैसे बताऊं मैं तो कितना याद आता है मैं जितनी सांस लेता हूं तो उतना याद आता है सिंधी सॉन्ग सुनाओ जैमे तू न हो जे एड़ी दिल काड़े कंदा सी यहाँ पे गाल आए हाजिर बुधाई होता पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए ठीक है और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके करीबी जनरल स्टोर से मिल रहे हैं नहीं ये मुझे जरूर बताइएगा अगर आपने अभी तक मालूमात नहीं ली तो आज ही आप जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से जरा मालूमात लीजिए और मुझे पता करके बताइए कि कहां कहां पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना वो अवेलेबल कराने की नीड है और आप चाहते हैं भाई फलां जगह पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलनी चाहिए और डी स्किन का फेस वॉश भी मिलना चाहिए ताकि हम इस्तेमाल करें और हम भी खूबसूरत हो जाए अच्छा अख्तियार अली गब्बर भाई हमारे साथ मौजूद है अख्तियार भाई विलेज मोहम्मद उस्मान गब्बर जी हमारे साथ हैं बहुत शुक्रिया भाई आपको वेलकम कह रहे हैं प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है मोहम्मद जमान भाई हमें सुन रहे हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय स्वीट बुआ जी ऑसम शो कोयल आरजे की तरह सो बिग वेलकम दिल से आपको भी बिग वेलकम दिल से दर्द दिल हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून चंदा जानी बिल्कुल ठीक ठाक है आप बताएं स्वीटी कैसी है और दिया हमारे साथ हैं दिया परी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम डियर से सिद्रा मुस्कान कैसी हैं आप उम्मीद के अपने नाम की तरह हंसती मुस्कुराती होंगी मैं तो कब से थी रेडी तैयार पटाले डियर सिद्रा डी स्किन ब्यूटी क्रीम से जी जी आपको ऐसा पटा लेंगे कि आप कहेंगे आए हाय ये तो सिद्रा ने हिप्नोटाइज कर लिया

0: खालिक लाशारी, सिस्टर सिद्रा हमसे लोग पूछते हैं आपकी स्किन इतनी अच्छी क्यों है। मैंने बोला डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है सिस्टर, थैंक्स। वाह वाह वाह वाह वाह, एड़ा एड़ा कॉमेंट कर ये तो मैंने रैंडमली पढ़ लिया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अली रजा ऐसे ही आप बताया करें लोगों को भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कमाल है कि आप इतना ग्लो कैसे करने लग गए हैं, वो भी सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से। मतलब दो तहां करें तो तहां केतरो जल्दी कोई प्रोडक्ट रिजल्ट दे, वो प्रोडक्ट वरी मेडिकेटेड फार्मूलो हो जाए, समझो था। सो जनाब ये कमाल हो जाएगा जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करते जाइए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए और जरा खूबसूरती में इजाफा लाते जाइए। और यहाँ पे टाइम हुआ है जनाब, लेते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: छात्र आज ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बन जाए, तो कोई तवाल आए एक बेहतरीन मौके सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाखिलाऊं जारी हैं। 4 साल जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 साल जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 5 साल जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA। खास सहूलतों स्कॉलरशिप मौजूद, 5 साल जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जने तो DPD प्रोग्राम में सिर्फ ₹10,000 दाखिला फीस, आई फीस सेमेस्टर सिर्फ ₹60,000। हिते तुम्हां के मिलंदा एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकम्मल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, आई फिजियोथेरेपी, OPD जी बेहतरीन सहूलत। ये इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा ए पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो सीट्स महदूद आहिन, तह करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो। ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि, हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 07115635642 ऐं 03108166111।
4: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शरायत जवाबित लागू है।
5: यार मचा क्या, किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई ना ही थी।
6: छो भला साथ छुआ तो के साफ साफ बुधा मसलो छाए।
5: यार एक मसलो हो जे तब बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगला है, ना भूख सही लगे थी, आई जे कुछ भी खावा थो तो हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पैर सुन थी वनन था, आई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही नाया।
6: यार तुझा घणा न, बस एक ही मसलो आ।
5: एक इहो की है?
6: हां तुझो मैदो खराब आ, छा तो न बुधवा, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न होंदो त भूख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो आई न ताकत मिलंदी।
5: तो पो मां छा कया?
6: सोलो हलाहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स, ए कुदरती जुजन मां तैयार कैल कोर्स, तुझे जिस्म जो हिस्सो बन जी, तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो आई मजबूत करे छड़ी।

0: बुख खुली वेंदई खाधो सुठे नमूने हजम थींदई पेट भूखजण खत्म सुस्ती खत्म जिस्म में ताकत ईंदई
1: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
0: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी आए राबते जे लाए नंबर भी अथई 0305-58-00-616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त
2: जी स्किन डल ऐ बेरोनक लगे थी खाने पहेजी स्किन के लियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ऐ ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हो किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक बिजनेस के प्रमोशन जॉब वैकेंसीज पब्लिक अनाउंसमेंट्स इवेंट्स सेमिनार्स स्पेशल ऑफर्स स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 0300-9319-667
4: GA FM 88
5: सिंध की आवाज
0: छा तवा जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजण तो पोई तवा लाए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखला जारी आहिन चार सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM पंज सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD बिन सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CMW CNA खास सहूलतूं स्कॉलरशिप्स मौजूद बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री जरे त DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखला फीस आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशनड क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज मुकम्मल लाइब्रेरी तजुर्बेकार फैकल्टी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप आई फिजियोथेरेपी OPD जी बेहतरीन सहूलत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा आई पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे याद रखो सीट्स महदूद आहिन तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस OT हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबितो 0711-56-35-642 ऐं 0310-81-6611
6: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं

0: पोलियो वर्कर्स के हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
1: 44 सालों जो तजुर्बो हजारे मरीजन जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद 44 सालों जी वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज जोड़न जो सूर मैदे में जलन गैस बदहजमी तेजाबियत गुर्दन जी पथरी बवासीर बे औलादी वारन जो किरण गंजपण फॉलेज खारिश ऐं बियन मुख़्तलिफ़ सेहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसर इलाज फराम करे रहा आहिनि आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर पुलिस हेडक्वार्टर चौक पुलिस लाइन सखर टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबुह 10 वगे खां शाम 5 वगे ताई अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 03 26 22 00 440
2: वेल्थ जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो होस्ट आगा जब्बार के साथ जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही रابطہ करें आगा जब्बार 03009312700
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
4: तहजीब सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
5: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज GFM 88 की आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी खिबसे की बनी है आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज

0: चाहिए FM 88
1: सिंध की आवाज मेरे प्रकाश मटियारी सकरन मेहरापुर माथिली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डीज स्किन ब्यूटी शो बिल्कुल जनाब स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ही बातें की जाएंगी और जनाब आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए जरा आपको रिजल्ट कैसे मिले और साथ ही साथ आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज करने के बाद किस तरह के रिजल्ट हासिल कर सकते हैं तो चाहे आप मर्द हसरात हैं चाहे आप खवातीन हैं हर कोई जरा कान खोल के सुन लें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के कितने सारे फायदे हैं जो आपको मिलेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोई ऐसी वैसी क्रीम नहीं है जैसे कोई नाइट क्रीम होती है रेगुलर आप इस्तेमाल करे होते हैं भाई जान डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है एक अड़ो प्रोडक्ट मार्केट में इन थी वया जिनो तमाम सदिन का इंतजार कयो पया आई सदिन का अगर तमाम इंतजार कयो पया तमाम जिला कोई भी अड़ो प्रोडक्ट तमाम के मार्केट में बिल्कुल भी नजर नहीं दो जरी तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे दिसना तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर ओए सब चीजों एड थे लाइन जे तमाम जी स्किन के सफा सोनो सफा प्यारो आई सफा गोरो गोरो बनाए छदींदी और जी सबसे बेहतरीन बात यह है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स ऐड किए गए हैं और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि भाई वाकई आप कुछ तो अलग इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ तो हटके इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना इसको इस तरह से ऐड किया गया है कि बजाय तो ये एक नाइट क्रीम लगती है लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो भाई आपके चेहरे पर जो है ना वो इस तरह के रिजल्ट आएंगे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है कि आप घंटों बैठकर सैलून्स वगैरह में अपना पैसा जो है वो वेस्ट करें या फिर आपके पास टाइम नहीं है कि आप घंटों बैठकर सैलून में अपना टाइम वेस्ट करें तो उस सूरत हाल को देखते हुए आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है जो कि आप लोगों का पैसा भी बचाता है आप लोगों का टाइम भी बचाता है वो कैसे क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स डाले गए हैं ना ये जना महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर ऐड किए जाते हैं तो अगर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए तो भाई ये सोच कर इस्तेमाल कीजिए कि भाई हम जो है ना ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका यूज करने के बाद हमें इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि भाई हमें आज तक कभी पहले नहीं मिले हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी बात है कि सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल जाते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला भी है यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो भाई आपकी स्किन से रिलेटेड फार्मूले बनाते हैं तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो जल्दी से कीजिए और ये बात आप लोगों को बता दी चलो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना भाई इसके अंदर जो ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है ना ये पूरे पाकिस्तान में देखने कितने सारे प्रोडक्ट है हमारे पूरे पाकिस्तान में उन तमाम प्रोडक्ट्स में सिर्फ दो से तीन ही प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें ऐड की गई है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी उन्हीं प्रोडक्ट में है जनाब तो इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है इतना कमाल का प्रोडक्ट

नोटिस रहेगी और आपकी जल्द की जो है ना वो खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। आपकी जल्द लोग देखकर कहेंगे कि भाई क्या हो गया, कौन सा जादू कर रहे हैं, इतना फास्ट आपको रिजल्ट मिल रहा है। और जनाब आपके चेहरे पर जो ये ताजगी होगी, ये एतमाद होगा, वो आप देखकर खुद ही कहेंगे भाई सदरात असाई पे चवे पर असाई हो यहाँ से जो इस्तेमाल न पाया करूँ। बाबा तुम्हारा इस्तेमाल करो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई वहाँ जी खूबसूरती में मॉइस्चराइज जो ना मॉइस्चराइज भी थी वही तुम्हारा जी स्किन आई तुम्हारे खूबसूरती में चार छंट लगी वेंदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम्हें डी स्किन जो फेस वॉश भी मिली रहो आहे, अगर कुछ मानू फर्ज करो क्रीमू न लगाए सकना है यानी कि तुम्हें थोड़ो स्किन से रिलेटेड को मसलो आए को प्रॉब्लम आए आई तुम क्रीम न था लगाए सको तो तुम्हें ला डी स्किन जो फेस वॉश मार्केट में अवेलेबल आए आई डी स्किन जो फेस वॉश है यो जी तुम इस्तेमाल करना तव्हांखे ख़बर पवंदी त तव्हां वाकई काशे इस्तेमालु करे रहिया आहियो। मार्केट में तव्हां वेंदा आहियो त खोड़ सारा प्रोडक्ट तव्हां ॾिसी करे असांखे अखियुनि खे मतिलबु ई महसूसु थींदो आहे त बाबा हीउ बि वठणु घुरिजे, हीउ बि वठणु घुरिजे ऐं हीउ बि ॾाढो सुठो लॻे थो, हीउ बि ॾाढो सुठो लॻे थो। पर उहे जेके सभु प्रोडक्ट हूंदा न उन्हनि खां हटके आहे डी स्किन फेस वॉश जेको तव्हांजे लाइ एतिरो प्रीमियम तरीक़े सां तयारु कयो आहे जॾहिं तव्हां ॾिसंदा त तव्हांजी हिकु अखि जेको भाए वेंदी त वाकई बाबा हीअ शइ ॾाढी भली आहे असांखे वठणु घुरिजे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि जेके प्रॉपर्टीज़ शामिल आहिनि डी स्किन जो फेस वॉश अगरि ॾिठो वञे त उन में तव्हांजे एक्स्ट्रा हिकड़ी चीज एड कई वही है जिनो नालो आहे हाइलोरोनिक एसिड सीरम। हाइलोरोनिक एसिड सीरम जो है ना यो तव्हांजे स्किन जला ढाढो जरूरी होंदो आहे ही हर स्किन जला जरूरी होंदो आहे यानी कि तव्हां अगर नंढा आयो तव्हां जवान आयो तव्हां कुराड़ा आयो हर स्किन जला जरूरी होंदो आहे उनसा फायदो यो पहुचंदो आहे तव्हांजे चेहरे के तो तव्हांजे स्किन जे कारण डीपली क्लीन रहंदी आहे तव्हांजे स्किन के डीपली क्लीन कंदो आहे ऐं तव्हांजे स्किन हाइड्रेट रहंदी आहे ऐं तव्हांजे स्किन जे कारण मॉइस्चराइज भी रहंदी आहे यानी कि कुछ माण्हू जी स्किन तव्हां ॾिठी हूंदी भई ईअं रुखी सुखी महसूस थींदी आहे ईअं लॻंदो आहे बाबा ॼण निंड पूरी नथी अथसि ॼण बीमार आहे तबियत ख़राब अथसि ऐं कुझु माण्हुनि खां वरी पुछबो बाबा छा थियो आहे तबियत सही न आहे साईं तव्हांजो मुंहुं ॿुधायो थो त हू चवंदा न मां ठीकु आहियां बसि मुंहिंजी स्किन खे लाइ छा थी वियो आहे स्किन एॾी बेजान ऐं बेरोनक लॻे थी त उन्हनि माण्हुनि खे ॿुधायो त बाबा डी स्किन जो फेस वॉश ट्राए करे ॾिसो डी स्किन जी ब्यूटी क्रीम ट्राए करे ॾिसो ऐं तव्हांजी स्किन ते निखार अची वेंदो ग्लो अची वेंदो हिकु अलॻि ई ख़ूबसूरती तव्हांखे मिली वेंदी ऐं तव्हां पाण ई चवंदा बाबा वाह वाह ही त कमाल आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था त पोइ तव्हांखे नंबर ते राबितो करणो पवंदो जेके नंबर तव्हांखे ॿुधायो उन्हनि खे ज़रा नोट करे वठिजो। ओके जनाब सो नंबर आहिनि 0033-4309-3732-7-3809-3-7-3-8-4-0-9 ठीकु आहे इहो टिनी तरीक़नि सां तव्हांखे नंबर ॿुधायो। इहो नंबर अगरि बंदि हुजे या फिर अटे न थिए न थिए कॉल त तव्हां ॿिए नंबर ते ट्राए करे सघो था। ॿियो नंबर आहे 0312-5907-3125-9907-3-1-2-5-0-2-5-9-0-7 चले ये नंबर आप डायल कर लीजिएगा जो कि आप लोगों के करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराने में जरा हेल्प करेंगे। आप उनकी हेल्प कीजिए वो आपकी हेल्प करेंगे वो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा देंगे। तो जल्दी जल्दी से आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन जो कि भाई नाम ही काफी है और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा बातें मजीद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप लोगों में ज्वाइन करते जा रहे हैं तो आप लोगों के फीडबैक सामने प्रोग्राम रखूंगी। आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि मुझे बताइए कि वो क्या है जो साल में एक बार खरीदते हैं मगर पूरा साल उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ जी ये मतलब सवाल पूछकर मेरे को वो वाली मीम याद आ गई कि हमने गरीबी देखी हमने गरीबी देखी है। हाँ जी आप बताएं

वश में ले गाना सुनेंगे, साथ साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों के साथ बातें भी करेंगे। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। मुझे बताइए आप कहां से मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं। अच्छा हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मुस्कान? ये मंजूर सिकरानी का सॉन्ग, हां जी लगाते हैं आपके लिए ये वाला गाना। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। और अख्तियार अली भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया भाई जान, वेलकम वेलकम। अबू हनीफ अल बलोची, आपने टॉपिक का जवाब दिया है।

ओके जी, अबू हनीफ अलबलोची, आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है, बढ़िया हो गया जी। ये तो जैन अली हमें सुन रहे, कहते हैं कि वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। कहते हैं कि तेरी शर्तों पर ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। वाह वाह, वेलकम। ओके जी, अहमद अली समेजू हमारे साथ मौजूद है, समूरी संगत के सलाम वालेकुम असलाम, प्यारा भा निदड़ी हमारे साथ।

0: It's 2 p.m. This time check.
1: शक्कर के मिजाज में घुली मीठी खजूरों की चाशनी,
2: सुनते रहिए GFM 88 शक्कर की आवाज.
0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har diya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.

0: न्यू इस्लामाबाद में कंटेनर रस्ते से पयल रस्ता खुलियल वजीर आजम के सलाहकार राणा सनाउला है पीटीआई वन बैकडोर राबता मौजूद है पर गाल नागमार्च से मुर्ती करण बाद ही कई वी इस्लामाबाद से चढ़ाई की इजाजत न दी वी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी नौजवानों की मुलाकातों वजीर आजम नौजवानों का मुख्तलिफ शोबन बाबत तजवीजों घुरी वरतियों शहबाज शरीफ चयो त बासलायत नौजवानों से सलाहत से फख्र है नौजवानी पाकिस्तान जो मुस्तकबिल पक है नौजवानी पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कंदा हुकूमत सहूलतू दी। पेट्रोलियम बारे वजीर अली परवेज मलिक की सदारत हेठ इजलास रेलवेज पारा रोडन की बंदिश की सूरत में तेल की फरहमी लाई बोगी फराम कराने की खातरी वफाक वजीर पारा तेल वारन शर वक्त फरहमी यकीनी बनाने लाई अगवाट कदम करने की हिदायत तेल की निगरानी लाई ओगरा पारा कंट्रोल रूम में कायम अली परवेज मलिक अटक रिफाइनरी के तेल वारू शयूं पहुंचाने वाले अमल के यकीनी बनाए वे फ्यूल रिलीफ का शहर के महरूम रखंदड़ पेट्रोल पंप्स खिलाफ कार्रवाई कई वे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मोरू
1: नौशहरो
2: मीरपुर खास
1: लाड़काना
2: सखर
1: गूंज रही है हर जगह पर
2: सिंध की आवाज
1: GAFM 88 नेटवर्क।
3: छा तवा जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन तो तवा लाए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिलाओ जारी आहिन। चार सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM पंज सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD बिन सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CMW CNA खास सहूलतों स्कॉलरशिप मौजूद बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री जरे त DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखिला फीस आई फीस

जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं, और क्यों ना की जाए जनाब, क्योंकि इतना शानदार, इतना कमाल का प्रोडक्ट अगर आपके पास मौजूद हो तो हम क्यों ना बताएं उसके बारे में आप लोगों को, ताकि अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कितना सारा फायदा आपको मिलेगा जब आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करने वाले लोगों से पूछिए उनको कितनी अच्छी अच्छी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं करके देखी डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो लाजमी ट्राई करके देखिए, और इसी के साथ साथ हमें जरूर बताइएगा आपको भी रिजल्ट्स कैसे मिले। ओके जी, सबसे मजे की और बेहतरीन बात ये है ना कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो मेरी केडेट फार्मूले से तैयार किए गए, यानी कि इन्हें डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है। तो ये जो हमारे जहन में चीज होती है ना कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है, हमारी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है, हमारे चेहरे पे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो अगर ये चीजें आप सोच रहे हैं या फिर आपके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है, तो आप लोग इस चीज से जरा जो है ना वो फ्री हो जाइए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन से रिलेटेड ही तैयार की गई है। हर स्किन से रिलेटेड है जनाब, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर स्किन के हिसाब से जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटिन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतना जबरदस्त फार्मूला बनके तैयार हुआ है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से बहुत शानदार वाले रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना जनाब, ये 2-in-1 फार्मूला है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ऐसे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो अगर आप कोई महंगा सा फेशियल अफोर्ड नहीं करते हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए और आपको मिल जाएगा जनाब ऐसा हुसन, ऐसी खूबसूरती, ऐसा निखार कि आप बस ख्वाबों में ही सोचते थे कभी, लेकिन अब वो ख्वाब सच हो सकते हैं। और हाँ, ये बात भी आप लोगों को बताती चलूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि भाई हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे हमें खूबसूरती मिल जाएगी, ये चीज तो तय है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो बाद में क्या वो खूबसूरती वापस आपसे छिन जाएगी, या फिर आप वापस वैसे ही हो जाएंगे जैसे आपकी पहले से स्किन थी, बेजान, रुखी सूखी सी, डल स्किन? तो ये तमाम चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगी। आपको जो रिजल्ट्स मिल चुके हैं, आपको जो निखार मिल चुका है, जो खूबसूरती आपको मिल चुकी है, वो बस आप ही की है। एंजॉय कीजिए अपनी खूबसूरती को और हमेशा इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। ब्रेक लेना जरूरी होता है तो अच्छी बात है जी, और ये भी बात है कि आप हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े कमाल का प्रोडक्ट है। तो खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है जनाब, लेकिन खूबसूरती के साथ अपने जिल्द की मुनासिब केयर जो होती है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत इजाफा करना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। ये क्रीम आपके रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है, और आपकी जिल्द को नरम, मुलायम और मॉइस्चराइज रखने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपकी जो स्किन है ना उसके ऊपर ख्याल अगर आप बहुत ज्यादा नहीं रख पाते हैं, तो बस आप सिर्फ और सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें, और साथ में अगर आप डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, तब तो भाई क्या ही बात है। ये दोनों चीजें जो ना बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीजों का। जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं और साथ में डी स्किन का फेस वॉश लगाते हैं ना, तब तो भाई वाह वाह हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल चुके होंगे। क्योंकि खूबसूरत और फ्रेश लुक के लिए सिर्फ एक मेकअप काफी नहीं होता, बल्कि आपके दिन भर का जो ख्याल होता है, केयर होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आप कोई अच्छा सा फेस वॉश ट्राई कर रहे होते हैं, कोई अच्छा सा फेस वॉश आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उससे ये कमाल होगा कि भाई आपकी जो स्किन है ना वो दिन भर जो है वो तरोताजा रहती है, शादाब रहती है, और आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है। तो अगर आप ही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा अच्छा सा फेस वॉश आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तो आपके लिए डी स्किन फेस वॉश मौजूद है। और जनाब डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम ऐड किया गया, और जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम है ना, ये आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को जो है ना वो डीपली क्लीन करता है। आपके चेहरे पर जो ये गंदगी हो जाती है जमा, या फिर डल स्किन काफी ज्यादा टाइम से ही आप, या फिर आपको समझ नहीं आता कि भाई आपकी स्किन हमेशा जो है वो ऑयली क्यों रहती है, हमेशा आपकी स्किन जो है वो रुखी सूखी सी क्यों रहती है, तो इन तमाम चीजों का हल है जनाब डी स्किन फेस वॉश। आप इस्तेमाल करते रहिए, अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल जमा हो जाता है तो आपके चेहरे पर जो ऑयल है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, आपके चेहरे की स्किन अगर रुखी सूखी है तो वो भी मॉइस्चराइज हो जाएगी। यानी कि ये हर स्किन के हिसाब से तैयार किया गया, और आपकी स्किन हमेशा जो है ना वो हाइड्रेट भी रहेगी, मॉइस्चराइज भी रहेगी, और आपकी स्किन के साथ जो है ना आप महसूस करेंगे कि भाई वाकई कमाल तो देखने को मिल रहा है। और ये कमाल आपको तभी मिलेगा जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसे आप 2-3 मरतबा रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, सुबह लगाइए, दोपहर लगाइए, रात में लगाइए, और जब आप इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि भाई सदरा क्यों बताती है, क्योंकि ये है इतने कमाल के प्रोडक्ट्स, तो आपको फायदा ही फायदा होगा।
ऑप्शन आप ट्राई करके देखिए और जरा खूबसूरती की दुनिया में आप भी कदम रखिए। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो जल्दी से डायल कीजिए 0332738439। बुढ़ी ट्रे सो बट्री है 73 84 टे सौ नव ऐं ॿियो नंबर आहे 03125025907। ॿुड़ी 312 50 25 907 ही नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सघो था। अगरि तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते खाली डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी ऐं फेस वॉश नथो मिले, नंबर ते तव्हां रातो करे फेस वॉश खे बि अवेलेबल कराए वेठो। मुकमल ख़ूबसूरती हासिल कयो बाबा ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो ऐं इस्तेमाल कंदा रहो ऐं ख़ूबसूरत थींदा रहो। इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया और सवाल ये पूछा कि आप मुझे बताएं कि वो क्या है जो साल में एक बार खरीदते हैं मगर पूरा साल उसे इस्तेमाल करना पड़ जाता है। और साथ साथ आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं 8881 और फेसबुक पर, तो फेसबुक वाली जितनी भी ऑडियंस है वो काइंडली पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कर दिया करें। इससे ये होता है कि भी बहुत सारे लोगों तक हम अपना पैगाम पहुंचा पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बता पाते हैं कि आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि डी स्किन का फायदा ही ऐसा है कि आप सारे लोग इस्तेमाल करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। Yeah.

अब तो आना चाहिए और यहाँ पर गुलाब जो गुल हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, कहते आपका प्रोग्राम नाइस है, ब्यूटीफुल है, थैंक यू वेरी मच जी। और दर्द दिल हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया स्वीटी, आपको वेलकम कहते हैं। और लिखती हैं कि वफा सांसों की तरह होती है और सांस हर किसी पर खर्च नहीं की जाती। क्या बात है, बढ़िया हो गया ये तो। और इनके अलावा अलीशा क्वीन कहती है कि और मुझे तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखना भी तुम्हारे हक तलफी लगती है। आए हाय अलीशा, क्या बात कर दी। और कहती है कि पसंदीदा शख्स ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दवा मुफ्त मिलती है। बिल्कुल सही कहा। बस भाई, पसंदीदा इंसान का होना ही काफी होता है। और बहुत शुक्रिया अलिशा, आप हमारे साथ हैं। अलीशा को वेलकम कहते हैं। अलीशा मुझे बताइए, डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया या खाली आप प्रोग्राम सुनने में मसरूफ है? और फरवा गुल, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। नजीबुल्ला बिरोही भाई, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। और किशोर भाई कहते हैं कि बहन भा आई हूँ, इन करे आप मुझसे सिर्फ 5 मिनट पहले इस दुनिया में आई हो, वरना हम जुड़वा होते। ये था कि कहीं दस तो 5 मिनट मत आंखा वी आया। छोटी बोल देते, बड़ी क्या मतलब, मैं इतनी बड़ी थोड़ी हूँ जितना आप बना देते।

अच्छा हनीफ अलबलोची कहते हैं कि मेरी नजर में ये दुनिया एक फूलों का बाग है और बाग में कई किस्म के फूल है और तुम उसमें इकलौती गुलाब का फूल हो. क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. और अलीशा कहती हैं आप ही मेरा प्यारा भाई सदाम हुसैन, उसके लिए कोई अच्छा सा गाना लगाओ. चले मैं कोशिश करती हूँ, प्यारी अच्छा सा गाना सुनाएंगे आपके प्यारे भाई को डेडिकेट करेंगे. और उनके अलावा जुल्फकार बोजार भाई हमें लाड़काना से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई. लाड़काना में भी आपको हर जगह डे स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो परचेज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए.

अब आधे पोस्ट को लाइक और शेयर करती रही हूँ, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करती रही हूँ, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी कराती रही है, नंबर के ऊपर रब्ता करती रही है और इस्तेमाल करती रही है। अच्छा यहाँ पर पैनल पर आते ही तो आपके मैसेजेस हैं। ओके जी, चाचा खालिद कहते हैं हमारे साथ, बेटा सिडू अस्सलाम वालेकुम, काफी डेज थी वया आहिन मुझे गानो न हलायो आ, हाजिर हाजिर अजु तां जो गानो लाज़मी हलायो था, आई ठीक आ तवां जो गानो मुखे मिली वयो आ, तां बस थोड़ो सबर कयो। ममताज मोलाई का गाना सुनाओ, ममताज मोलाई तुम बुधो हों, बेशक मजो अची वो हों, और ये हमारे साथ है मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई, वालेकुम असलम कहते हैं।

वैसे आजकल के दौर में सच्ची बात है, दोस्ती रखनी भी नहीं चाहिए किसी से भी नहीं। और गाने एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर हमारे साथ है मंजूर अली खास केली। चाचा खालिद को शादी मुबारक, झंडो मरी का हाजिर हाजिर बाबा तांजो मुबारक पहुंची हुई चाचे ताई। और गोट हाची गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खां। कुर्बान खास के लिए भाई हमारे साथ माजूदी भाई को वेलकम कहते हैं। अच्छा साइमा मीर हमारे प्रोग्राम में कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह सिंजी सदाबहार, आरजे सदरा मुस्कान, शो दमदार आहे, मजेदार आहे, शानदार आहे, सॉन्ग सुनाओ सिंधी मेशअप, हलायूं था सोनी जिलाए सिंधी मेशअप, डेडिकेट। अच्छा तमाम टॉपिक जो जवाब भी दिनो है, सही है, सही है, सफा सही है। और साइमा मीर कहती है सलाम बीमार निदड़ी के, और कहती है गुड न्यूज है उसके लिए, फिरोज खान का नया ड्रामा आने वाला है, देखना मत भूलना और दवाई पी लो, जल्दी सेहतियाब हो जाओ, सिद्रो के शो की रौनक हो तुम। हाँ भाई नगाल में शक कोने को अलाय वो दे भी थी अलाय हली भाई

ॻाल्हि ॿुधो ॻाल्हि ॿुधो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था कोन गाना त ॿुधो था पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु बि कयो बाबा ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल खां फौरन बाद ई तव्हांखे जेका ख़ूबसूरती मिलंदी न माण्हू तव्हांखां वराए वराए पुछंदा त ॿुधायो त सही आहे ख़ूबसूरती काॾां आंदी अथव हिनखे ॿुधाइजो बाबा त हीअ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा तव्हांजी हर स्किन ते सूट करण वारो प्रोडक्ट आहे यानी कि तव्हांजी स्किन कहिड़ी बि तरह जी आहे हर स्किन जे मथां तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमालु करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिकु मेडिकेटेड फार्मूला आहे त इहो टेंशन बि न आहे बाबा त केमिकल हूंदसि या असां लॻाए सघूं था अलाए नथा लॻाए सघूं तव्हां हर स्किन जे मथां आराम सां लॻाए सघो था मेडिकेटेड फार्मूलो आहे डॉक्टरनि ठाहियो आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी डबी जॾहिं तव्हां ॾिसंदा त हुन डबी ते बि डॉक्टर माई जो फोटो आहे त हीअ निशानी अथव यादि रखिजो वठण वञो त स्कीम खां बचो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम ई वठी अचो अच्छा अदा चए थो असां दोस्ती रखंदा न आहियूं पर माण्हू ज़ोरी रखनि त छा कयूं हाणे दौर न आहे दोस्ती रखण जो जेके पुराणा फ्रेंड्स अथव न उहे काफ़ी आहिनि गंज आहिनि छॾे ॾियो बसि माण्हुनि खे

अच्छा चाचू चे तो झंडो मरी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी, बिल्कुल झंडो मरी में मिले थी, यो भाव ही बुधाई ना था, झंडो मरी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है। फहीम भाई कहते हैं कि अदा सबसे पहले जवाब इसीलिए नहीं दिया, एक मुसीबत मेरे ऊपर खड़ी थी, उसे बात कर रहा था, कमेंट भी तैयार कर रहा था तो आपको पहले जवाब मिल गया। अच्छा अच्छा सही है। उनका अलावा जेको आ सो तालिम मरी भाई से सगड़ मौजूद है, तमाम खोट सारा कॉमेंट आए भाई भाई थैंक यू सो मच तहां से सगड़ आयो आई पोस्ट के लाइक शेयर करना रहो इते ऐसा मनू था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ मोटी जल्दी तुम्हारी चांदी तवाते बैठा हो चुका भी नहीं पर जगह तना हिल जो मां ओही वनी ओही मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। बिल्कुल जी व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: GA FM 88
3: सिंध की आवाज.
4: तव्हां जो ख्वाब आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो. सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में हिन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि. 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD, 5 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA. ख़ासि सहूलियतूं, स्कॉलरशिप्स मौजूद. 2 सालनि जे कोर्सेस में एडमिशन बिल्कुल फ्री. जॾहिं त DPD प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया. हिते तव्हांखे मिलंदा एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप ऐं फिज़ियोथेरेपी OPD जी बहितरीन सहूलियत. ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे. याद रखो, सीट्स महदूद आहिनि, तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो. ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि, हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि. एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर. राबितो: 07115635642 ऐं 03108161111.
5: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है. इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत.

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

सुनने वाली तमाम तेर समातों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम इन खुशामदीद। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

ओके जी, बिल्कुल आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ हमारी फसली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ड आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो जानू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? कहती है सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। कहती है चाय पियो, इस वक्त चाय हम शाम को पीते हैं। और कहती है शादी की बेहतरीन उम्र 70 साल है, ना ज्यादा अरसा ससुराल का, हाँ जी ससुराल का अजाब, ना लंबी अजियत, बस मुख्तसर तजुर्बा और सीधा आखिरी सफर। ये तो आपने कुछ ज्यादा ही उम्र बता दी, वैसे सही है, इससे बेहतर है इंसान करे ही ना। और कहती है सुनो प्यारी, कल वैसे इंग्लिश कहानी आपने अच्छे लगाए थे और सॉन्ग्स अच्छे प्ले किया करें। हाँ मां कोशिश करनी आता गाना सुठा सुठा प्ले कर, पर मानो जी वरी फरमाइशी बची वे तो बस वो मिक्स गुचुड़ मुचुड़ थी वेंदो है कम समझो था। और मोहम्मद गोठ मोहम्मद तैयब थी हबी बोला थे भाई कहते चाचा खाले तो जुड़ी जुड़ी सच में शादी थी आए। अरे बाबा छो चाचे जे कड प्यायो बेचारे के घर मकड़ रहे मेरे नडी मजाक में चयो सी। और ये हमारे साथ ही गोठ मोहम्मद तैयब थे बोला थे भाई कहते हैं कि बेस्ट आरजी जी सिद्रा मुस्कान यहाँ गाल सच्ची आहे न बाबा ना है सच्ची तमाम बस इतने स्टॉप फुल स्टॉप लगा शादी ना थे तो शादी कराईंदासखार मिले तो खूबसूरती मिले थी चमक चेहरे से अचे थी ना सब ऐसी नोटिस कदा चवंदा बुधा तो सही पा इस्तेमाल कर एडा खूबसूरत थी वह जाहिर सी गाल शादी ना थे तो शादी भी थी वी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इो कमाल है बाबा तो मेरी

साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं या फिर कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं। भाई ये बहुत ही कमाल का बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो है ना बहुत सारी वो चीजें ऐड की गई हैं जो कि आपकी स्किन के लिए परफेक्ट साबित होने वाली है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में आपको रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है और जना मेडिकेटेड फार्मूला है। तो जाइए परचेज कीजिए, मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, तो भाई फायदा उठाइए। अगर आपको ऐसा प्यारा प्रोडक्ट बताया जा रहा है तो मेरा तो दिल कर रहा है कि जल्दी जल्दी से जाइए और परचेज करके आइए और इस्तेमाल कीजिए। ये नाइट प्रोडक्ट है, नाइट क्रीम है, तो इसको रात के टाइम आपने इस्तेमाल करना है। दिन के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड किया करें क्योंकि दिन में आप वैसे भी थोड़ा सा काम कर रहे होते हैं, धूप में जा रहे होते हैं, बिजी होते हैं, तो बस रात का टाइम निकाल लिया करें अपने आपको जरा रिलैक्स करके, अपना फेस वॉश करें डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर दें और सुकून से लगाएं, प्यार से लगाएं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है वो फेशियल की चीजें ऐड की गई तो इसको हम रगड़ेंगे फेस के ऊपर अप्लाई करके, तो ऐसा मत किया करें। ये फेशियल की चीजें इसके अंदर ऐड जरूर की गई लेकिन ये फेशियल नहीं है। तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को नाइट क्रीम की तरह ही इस्तेमाल करेंगे और सुकून से लगाइए, प्यार से लगाइए, खुद ही आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगा और आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो है ना वो रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और नंबर जो आपको प्रोग्राम में बताए जा रहे हैं उसके ऊपर राबता करते रहिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए।

क्या बात है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा यहाँ पर मेशअप, आप एंजॉय करें और साथ ही साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस दें। जी अखलाक भाई में सुन रहे हैं, अखलाक भाईजान बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम का हिस्सा। और अब्दुल वफा अब्दुल वहीद जतोई भाई हमारे साथ ही भाईजान को खुश आमदीद कहते हैं। उन्हें कहा अलावा तुम इतना स्टिकर शेयर करी सदन बाबा छो।

अरे क्या बात है, और इसी के साथ चाचा कहते हैं कि सिडो बेटा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम में विटामिन सी एड है या फिर नहीं? नहीं, विटामिन ई बीट्स मौजूद है जनाब, विटामिन सी नहीं, और विटामिन ई बीट्स विटामिन सी से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो इसका आप यूज कीजिएगा। और हिदायतुल्ला कहते हैं कि जहाँ तू है वहाँ मेरे सही है भाई। अखलाक भाई, आपने टॉपिक का जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। वैसे आजकल आप क्या बिजी रह रहे हैं कि प्रोग्राम में कम आ रहे हैं? ओके जी, साजिद हुसैन सुबरो कहते हैं वाह वाह वाह जो सॉन्ग आ है, आप हमें मिठो देरों से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, वेलकम हो गया आपका भी। और हजार भाई हमारे साथ मौजूद है, शो अच्छा है सिस आपकी तरह, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। रमजान भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं रमजान भाई। किशोर भाई कहते हैं कि अगर किसी इंसान में सारी आदतें एक जैसी हो, सोच एक जैसी हो, तो लोग कहते हैं तेरा और उसका जन्म में कुछ मिनट का फर्क होगा। हाण समझा, हाण मा समझा, हाण समझा यानी कि हु गडगड पैदा थे होना इन वजह से। ओके, सो इन चीज के बारे में ज्यादा मुख्य नॉलेज ना है, ॾिसंदा सी अगर इहा चीज सही साबित थी त पोइ मां चवंदमि वाकई। पर हुन खां पहिरीं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, छो त मां बि इस्तेमालु कयां थी, त तव्हां बि इस्तेमालु कयो। पर हिदायतुल्ला कहते हैं ओके ओके ओके।

0: सिंगर आजकल
1: मोहब्बत कई कई।
0: हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है भाई हर किसी को हक है अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करने का, तो किसी को टोका मत करे और उसे आप मशवरा दे दे कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर जो रिंकल्स आ रहे हैं उनको तो उनको जरा कंट्रोल में रखे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई आपके चेहरे की जो मतलब उम्र आपकी बढ़ती जा रही है, आपके चेहरे पर रिंकल्स आते जा रहे हैं, तो उनको भी कंट्रोल में रखे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल मतलब बहुत सारी चीजों के लिए फायदेमंद है, तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको मजे आ जाएंगे।

हाँ जी, क्या ही बात है, बहुत ही अच्छा गाना। अच्छा मोहम्मद तैयब थेबू बहुत हमारा टॉपिक जो जवाब देने वाला है जे को सही आ है। फरमान अली हमें सुन रहे हैं, फरमान भाई हमें घोटकी से सुन रहे हैं, फरमान भाई को वेलकम कहते हैं। फरमान भाई आप घोटकी में जाइएगा और वहाँ से जाकर डे स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिएगा, ठीक है। मिस्किन जमाली हमें सुन रहे हैं उस्ता मोहम्मद से, हाजी अल्लाह बख्श जमाली, पहलवान अली जमाली, मोहम्मद बख्श जमाली, भांजो मोहब्बत प्रोग्राम उदुपया। और वसीम भाई तुम्हारा गाने जी फरमाइश कैया पर थोड़ी लेट कैया, सो यो गानो असा सुभाणी बुधंदासी न बल्कि बेडी बुधंदासी, सुभाणी जी सुभाणी बुधंदासी सुबह ही तो जुम्मो आए ना।

अच्छा ऐसे निगत जी आवाज में भी हुयो छ वो गानो मुखे खबर ना ही। रमजान अली हमें सुन रहे भाई, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराइए ठीक है। बख्त अली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।

0: अच्छा रमजान भाई, आपने जो बाकी मुझसे पूछा है उसके बारे में मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आप सिर्फ मुझसे मेरे बारे में पूछा करें। मैं पूरी दुनिया से बेखबर इंसान हूँ, तो बस मुझसे मेरे बारे में बातें पूछा करें। और उनका अलावा हाँ जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया।
1: जो प्यार समझी है पसंद क्यों से।
0: और सालार सिकंदर हमारे साथ मौजूद है, आपको भी जी वेलकम कहते हैं। किशोर भाई कहते अदा जिनकी शादी थी वही या चाहने जी वरी थी दी, अगर हो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए तो हाँ बिल्कुल चांसेस था। ट्राई करें।

अलीशा कहती हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हमें आपका जो सिटी है ना ये मुझे जरा समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से आप कहती हैं कि वहाँ पर नहीं मिल रही है। मैं जो आपका ये कमेंट है ना ये जरा मैं इसको भेज देती हूँ अपने जरा ग्रुप के अंदर, तो पता चल जाएगा कि आपके यहाँ मिल रही है या फिर

तो अलीशा, आप जरा अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, मालूमात लीजिएगा कि वहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर नहीं, वरना हम तो अवेलेबल करा ही देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। अच्छा रिजवान भा, तव्हां जो गानो आहे पंज बजे वारे प्रोग्राम में लाज़मी हलाईंदमि, तव्हां अचो न अचो पर तव्हांजो गानो लाज़मी हलंदो। सो थैंक यू सो मच, तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियो। अच्छा फज़ली कहती है कि शादी करनी चाहिए बट छोटी एज में नहीं, सिंगल बंदा अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरी छोटी उम्र में शादी हुई, कम से कम 30 या 35 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए थी। भाई माण्हू जेके न जीअण हराम करे छॾनि था। हाणे मुंहिंजी 25 साल उमिरि आहे, मतिलब एॾो सॼी फैमिली, मतिलब दोस्त हर कोई उन जे वात में आहे, शादी करंदी करी शादी करे भाई लोग जीने ई नहीं दे रहे। तो 35 साल त मतिलब इलाही परे आहे, अञा लेनी चाहिए मुझे लग रहा है। सबका फेवरेट टॉपिक यही है।

बिल्कुल जी एड़ी दिल कारे कना सी पर दिल के थोड़ो साइड ते रखो सई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के वठी अचो सई आ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जने दा वठी ना तवाने चेहरे जा सब प्रॉब्लम दूर थी ना ता पानी चोना वा सई वा असा पिना छुन पया वठी चो सई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा जला हर जगह ते असा अवेलेबल कराई छडी आ सब का पेरी ता पानी करीबी जनरल स्टोर्स ते वनो ओता मालूमात वठो आई ता के खबर पेजी वेनी ता किथे किथे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आ अगर ता के नबी खबर पती ता जे के नंबर ता के प्रोग्राम बुधाया वेना ना नंबर ते तवा राबतो करी वठना कयो या कॉल कना कयो या मैसेज कना कयो भाई साहब का पुछो भाई साहब किते किते अवेलेबल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी असा वठी सगू असा इस्तेमाल करे सगू असा सोना थी सगू।

जी बाबा पूरा 25 साल ट्रस्ट ना है तो शायद ना ऐसी देखा रहा आई एम नन्ना मन्ना राही देश का सिपाही मनो न मनो और उन खां अलावा फहीम भाई तांजो गानो के जो तसा के ना है वणदो भला भला गाना फरमाइश कंदा कयो तो छो न वणदा एसन ता लगायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा शादी कयो न कयो तांजो पर्सनल मैटर आहे मामा समान कहते ये एक मासूम लड़की का सवाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम कितने दिल लगाने के बाद शादी हो सकती है भाई उसको बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम रिजल्ट्स तो आपको दो दिन बाद ही देगी लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शादी कब करेंगे

अच्छा अपना ख्याल रखिए और बस ख्याल रखिए। चलिए हमारे जाने का वक्त करीब आ चुका है तो आप लोगों से इजाजत लेते हैं और हजार बहुत थैंक यू सो मच तांजू मोहब्बत हुआ है और तालु मरी बहुत तांजू मोहब्बत हुआ है प्रोग्राम बुध पया। अच्छा आदा कहते हैं कि दिस त सही केडो मासूम अंदाज में चए पे मुखे खबर ना है, वैसे जितनी तोखे खबर है उतनी शायद गूगल के भी ना है खबर। इस बारे में पता नहीं था जिस बारे में आपने बात करी, तो जो आउट ऑफ सिलेबस होती ना चीजें वो शायद मैं नहीं उनके बारे में रिसर्च करती, बाकी तो हाँ ये चीज है भाई वो केड़ी चीज आज का मुखे ना है खबर, सब मानू अचे मुखा पूछना है बारे में बुधा आई एम वेरी ज्ञानी बाबा। सो इंसान है भाई उसको सारी चीजों के बारे में नहीं होता पता, ये चीज याद रखिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिएगा। और ये जी बस हाँ गालू तो असा खत्म क्यों था पर असो साथ खत्म नहीं दो बाबा कदें भी तवजो असो मोहब्बत ये बरकरार रही तवजो साथ हमेशा बरकरार रो असा गड हूँ तवा गड हूँ। सो वरी मिलूँ था पंज बजे वाले प्रोग्राम में पांजो ओ एडो सारो ख्याल रखना किते का गलती थी हो जाए तो माजरत क्यों था आई जो को फीडबैक रेजी हुआ तो बाबा माजरत मोकलानी ना ही सिलसिला में सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
0: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News।

0: फोर्सेज यूं दहशत गर्द खिलाफ केपीके में कार्रवाई जारी। उत्तर वजिस्तान में फोर्सेज के ऑपरेशन दौरान 8 खारजी दहशत गर्द मार्ज वाया। सिक्योरिटी जरिए मूजिब फोर्सेज कार्रवाई दौरान दहशत गर्दन के थाकन के कामयाबी से तबाह किया। दहशत गर्दन मस्जिद के ढाल तौर इस्तेमाल करने की कोशिश कई। सिक्योरिटी फोर्सेज मस्जिद जो तकदस बरकरार रखे दहशत गर्दन के कामयाबी से निशानो बनाए जहनुम भेड़ो कर मार्ज वेल दहशत गर्दन वटा हथियार बेहद क्या वह। पाकिस्तान जो अगराई कंदड़ अफगान तालिबान रजीम के मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान जा अफगानिस्तान में 10 हंधन ते फिजाई ए ड्रोन हमला। पाकिस्तान ते हमले ला इस्तेमाल थियल था ड्रोन जा जखीरा तबाह। सुद समावारे वफाकी वजीर अता तारड चवा है पाकिस्तान अफगान सरजमीन तां ड्रोन हमलन बाद जवाबी कार्रवाई कई है। पाकिस्तान ते हमले ला इस्तेमाल थियल ड्रोन लॉन्चर्स ए जखीरन के कामयाबी से निशानो बनाए तबाह कयो वयो है। पाकिस्तान अंदर थींदड़ दहशतगर्दी में अफगान शहरन के मुलविस हुजण वारियूं वधीक शाहिदियूं साम्हूं अची वयूं। मस्तोंग में मारजी वियल दहशतगर्दन में अफगान शहरी भी शामिल। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब मस्तोंग में मारजी वियल हिकु दहशतगर्द ख़लील अहमद वटां अफगान कार्ड ऐं ॿिए दहशतगर्द ज़ुल्फ़कार अरब अबू उमर वटां अफगान गुजेतरा इदारे JDI जो कार्ड मिलियो। 2025 में अफगान तालिबान ऐं भारतीय गुझे इदारे राह वटि विच में गठ जोड़ जो इंकशाफ थियो हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका ईरान तकरार खत्म कराने लाइ पुरउमीद खिते में अमुन के क़याम बारे कोशिशूं जारी रखने के अज़म जो वर्जाओ। न्यूयॉर्क में मीडिया से ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चवा है पाकिस्तान जो समूरो ध्यान ईरान अमेरिका जंग के खात्मे ते आहे। पाकिस्तान जो अमेरिका ईरान सिकतान के खात्मे लाइ साथी वारियूं कोशिशूं जारी आहिनि। दोस्त मुल्क भी कोशिशनि में सहकारी आहिनि। उमीद नाहे छॾी समूरो ध्यान तकरार जे खात्मे ते आहे। शर्त पूरा थियण ताईं नाब न हरमुस खुलंदो नई ॻाल्हियूं थींदियूं। ईरान जो वाज़े ऐलान। ईरानी अमलदार मूजिबि नाब न हरमुस खुलण वारो मामिलो जंग जे ख़ात्मे अमेरिकी फ़ौजी दबाव में घटिताई सां ॻंढियल आहे। जेसिताईं ईरानी शर्त तस्लीम न कया वेंदा तेसिताईं नाब न हरमुस न खुलंदो। ईरान एटमी हथियारनि तां हथ खणे त अमेरिका तेहरान सां जंग ख़तम करे सघे थो। अमेरिकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त अमेरिका लाइ वॾो मसलो एटमी हथियारनि वारो आहे। ईरान वटि कॾहिं बि एटमी हथियार न हुजणु घुरिजनि। इहो मुमकिन आहे त सदर ट्रंप बि तेहरान सां मुआहिदो करे सघे थो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जे ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राक़्चे सां मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापन ऐं ख़िते में अमुन वारनि कोशिशनि ते ॻाल्हियूं। परॾेही खाते मूजिबि इसहाक़ डार ऐं अब्बास राक़्चे में मुलाक़ात गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान साइड लाइन ते थी आहे। ॿिन्ही अॻवाननि अमुन जे क़याम लाइ सिफ़ातकारीअ ते ज़ोर भरियो। मुनक़िती वज़ीर तलाल चौधरी जे KPK हुकूमत ते तनक़ीद। KPK पुलिस एक्ट में तरमीमनि खे बि रद्द करे छॾियो। तलाल चौधरी चयो आहे त KPK जी पुलिस एक्ट में तरमीम सां पुलिस तबाह थी वेंदी। KPK हुकूमत होश खां कम वठे। PSP रूल्स में तरमीम जो इख़्तियार KPK वटि नाहे। IG जा इख़्तियार वापसि वठी कमांड खे तबाह कयो वियो आहे। एक्ट में सियासत आहे। वफ़ाक़ वटि पुलिस एक्ट में तरमीम बाबति ऑप्शन्स मौजूदु आहिनि। लॉन्ग मार्च मुलतवी थियण ताईं PTI सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। इस्लामाबाद में कंटेनर रस्ते सां पयल आहिनि ऐं रस्ता खुलियल आहिनि। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त PTI वारनि सां बैकडोर राब्ता मौजूदु आहिनि पर ॻाल्हियूं लॉन्ग मार्च मुलतवी करण बाद ई कयूं वेंदियूं। इस्लामाबाद ते चढ़ाई जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी नौजवाननि जूं मुलाक़ातूं। वज़ीर आज़म नौजवाननि खां मुख़्तलिफ़ शोबनि बाबति तजवीज़।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान जो अगराई कंदड़ अफगान तालिबान रजीम के मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान जा अफगानिस्तान में 10 हंधन ते फजाई ए ड्रोन हमला। पाकिस्तान ते हमले लाए इस्तेमाल थियल थाक ए ड्रोन जा जखीरा तबाह। सुत समा वाले फाकी वजीर ताला तारण चवाए था पाकिस्तान अफगान सरजमीन ता ड्रोन हमलन बाद जवाबी कार्रवाई कई है। पाकिस्तान ते हमले लाए इस्तेमाल थियल ड्रोन लॉन्चर्स ए जखीरन के कामयाबी सा निशानो बढ़ाए तबाह कयो है। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ अमरीका ईरान तकरार खत्म करण लाइ पुरउमीद खिते में अमन के क़याम वारियूं कोशिशूं जारी रखने ते अज़म जो वर्जाव। न्यूयॉर्क में मीडिया से ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त पाकिस्तान जो समूरो ध्यान ईरान अमरीका जंग जे ख़ात्मे ते आहे। पाकिस्तान जूं अमरीका ईरान छिकताण जे ख़ात्मे लाइ सालिसी वारियूं कोशिशूं जारी आहिनि। दोस्त मुल्क बि कोशिशुनि में सहकारी आहिनि। उमीद नाहे छॾी समूरो ध्यान तकरार जे ख़ात्मे ते आहे। शर्त पूरा थियण ताईं नाप नाए हरमोस खुलंदो नई ॻाल्हियूं थींदियूं। ईरान जो वाज़ ऐलान। सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं, धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। ईरानी सुप्रीम लीडर जे सलाहकार याहिया रहीम सफ़वी चयो आहे त अमरीका या इसराइल ॿीहर हमिलो कयो त जंग हिंदी समुंड ताईं पखिड़िजी वेंदी।

ईरान एटमी हथियारनि तां हथु खणे त अमरीका तेहरान सां जंग ख़तम करे सघे थो। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूपियो चयो आहे त अमरीका लाइ वॾो मसइलो एटमी हथियारनि वारो आहे। ईरान वटि कॾहिं बि एटमी हथियार न हुजणु घुर्जनि। इहो मुमकिन आहे त सदर ट्रंप बि तेहरान सां मुआहिदो करे सघे थो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ज़ी सां मुलाकात। बितरफ़न लाॻापन ऐं ख़िते में अमन वारियुनि कोशिशुनि ते ॻाल्हियूं। परॾेही खाते मूजिबि इसहाक़ डार ऐं अब्बास राख़्ज़ी में मुलाकात गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान साइड लाइन ते थी आहे। ॿिन्ही अॻवाननि अमन जे क़याम लाइ सफ़ारतकारी ते ज़ोर भरियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियुनि ऐं नौजवाननि जूं मुलाक़ातूं। वज़ीर आज़म नौजवाननि खां मुख़्तलिफ़ शोबनि बाबति तजवीज़ूं घुरे वरितियूं। शहबाज़ शरीफ़ चयो त बासलाहियत नौजवाननि ते सलाहियतनि ते फ़ख्रु आहे। नौजवान ई पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आहिनि, पक आहे नौजवान ई पाकिस्तान जी क़िस्मत तब्दील कंदा, हुकूमत सहूलियतूं ॾींदी। सिंध जो विरागो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। टीवी सर्विस सां को फ़र्क़ न पवंदो। एम क्यू एम बीह लसानियत खे हवा ॾेई रही आहे। पाकिस्तान खे लसानियत हवाले थियण न ॾिनो वेंदो। सीनियर वज़ीर शजील नामे मण चयो आहे त कराची में इंडस्ट्री एम क्यू एम जे हड़तालनि सबबि बंदि थी। कराची ऑपरेशन जो हिसो रहंदड़ एस एच ओस खे चूंडे मारियो वियो। एम क्यू एम खे हाणे ॿीहर बदमाशी वारी सियासत करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां के पी जी तरमीमी पुलिस एक्ट खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करण जो ऐलान। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त हीउ एक्ट अञा काबीना मंज़ूर कयो आहे। के पी हुकूमत होश खां कम वठे। वफ़ाक वटि पुलिस एक्ट बाबति घणा ऑप्शन मौजूदु आहिनि। एक्ट सुप्रीम कोर्ट में बि चैलेंज थींदो। के पी हुकूमत रुगो आई जी खां अख़्तियार वापसि न आहिनि वरिता, पर कमांड खे ई तबाह करे छॾियो आहे। पुलिस एक्ट में तरमीम सियासी आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में रेंजर्स खे मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। इस्लामाबाद जे चीफ कमिश्नर ऐं पंजाब हुकूमत जी दरख़्वास्त ते वफ़ाक़ी घरू वज़ारत नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। रेंजर्स खे जथनि जे हमलनि ते कार्रवाई जा मुकमल इख़्तियार ॾिना विया।

फोर्सेज यूं दहशत गर्दन खिलाफ केपी में कार्रवाई जारी। उत्तर वजिस्तान में फोर्सेज के ऑपरेशन दौरान 8 खारजी दहशत गर्द मारजी वह सिक्योरिटी जरिए मूजिब फोर्सेज कार्रवाई दौरान दहशत गर्दन के ताकन के कामयाबी से तबाह कर दहशत गर्दन मस्जिद के ढाल तौर इस्तेमाल करने की कोशिश कई। सिक्योरिटी फोर्सेज मस्जिद जो तकदस बरकरार रखने दहशत गर्दन के कामयाबी से निशानों बढ़ाए जनम बेड़ो कर मारजी वह दहशत गर्दन वटा हथियार भी हथ कया वह। पाकिस्तान अंदर थींदड़ दहशतगर्दी में अफगान शहरियन के मुलविस हुजण वारियूं वधीक शाहिदियूं अथ। मस्तूंग में मारजी वियल दहशतगर्दन में अफगान शहरी भी शामिल। सिक्योरिटी जरिए मूजिब मस्तूंग में मारजी वियल एक दहशतगर्द खलील अहमद वटां अफगान कार्ड ए बे दहशतगर्द जुल्फकार उर्फ अबू उमर वटां अफगान गुजे इदारे के डीआई जो कार्ड मिलो। 2025 में अफगान तालिबान ए भारतीय गुजे इदारे रा विच में गठजोड़ जो इंकशाफ थे हो। नू लीग जो डॉक्टर नजीब नकी आजाद कश्मीर जो नओ सदर चूंजी वो। आजाद कश्मीर के कानून साज असेंबली में वोट थी। डॉक्टर नजीब नकी 45 वोट हासिल कर आजाद कश्मीर जो 25 सदर चूंजी वो। पीपल्स पार्टी जो चौधरी लतीफ अकबर 13 वोट हासिल कर सको।

गंबट माशा लतीफ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ंदड़ शागिर्द सजाद उजण जो लाश है शागिर्द सजाद उजण जो लाश पाणी जे तलाब में मिलो। वारिसन जो चवण है नौजवान सजाद उजण गुजर दिन का गुम हो अज संदस लाश मिलो है। नौजवान के कत्ल किया वो है जांच कर कातलन के गिरफ्तार किया वे। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के शागिर्दन जो साथी शागिर्द जो लाश हथ अचण वाले वाक़े खिलाफ़ एहतजाज जवाबदार के गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।

तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: This program is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: सिंध के माथे का झूमर
0: DFM88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज.
4: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है.
5: मेरे बाबा ने मेरी बात पक्की कर दी है. अब कुछ नहीं हो सकता. अब हम कभी नहीं मिलेंगे. मुझे माफ कर देना.

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: घरू मामलन वाले ममलकती वजीर तलाल चौधरी चेवा है हुकूमत इन एहतजाज के मामले में फौज के मुकरर रखने जो फैसलो किया है. घरू वजारत पुलिस रेंजर्स FC की मदद से एहतजाज के मुंह डी. बरतानवी खबरू इदारे से गलंदे तलाल चौधरी सिंध पंजाब पुलिस का अटाला तलब कया वह. जरूरत पवण से फोर्स जो इस्तेमाल भी कर सकते तो ममलकती वजीर तालीमी इदारा ए शॉपिंग सेंटर्स बंद करने फिलहाल को भी प्लान ना है. जिंदगी जो कारोबार मामूल मूजिब जारी रहा.

यूरोपीय अॻुवाणनि पारां अमरीका ईरान निशिकताण घटाइण लाइ पाकिस्तानी कोशिशुनि जी वाखाण। न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली जे इजलास जे मौक़े ते वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी यूरोपी काउंसिल जे सदर एंटोनिया कोस्टा ऐं यूरोपी कमीशन जे सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन सां मुलाक़ात। शहबाज़ शरीफ सां मुलाक़ात बाद यूरोपी अॻुवाणनि पारां एक्स ते पोस्ट कयल बयाननि में पाकिस्तान जी टियाकड़ी कोशिशुनि जी वाखाण। एंटोनिया कोस्टा ऐं उर्सुला चयो त खिते में शिकताण घटाइण ऐं ॻाल्हियुनि खे हथी वठाइण लाइ पाकिस्तान सुठो किरदारु अदा करे रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ न्यूयॉर्क में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त अमरीका ऐं ईरान विच में शिकताण घटाइण लाइ असां अञा बि पुरउमीद आहियूं। पाकिस्तान अमुन ऐं इस्तेहकाम जे लाइ पंहिंजूं कोशिशूं जारी रखंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं ईरान जे परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची विच में मुलाक़ात। न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली जे इजलास जे मौक़े ते थियल मुलाक़ात दौरान इलाइक़ी ऐं बैन अलाक़वामी सूरताल बाबति ख़्यालनि जी ॾे वठि। इसहाक़ डार खिते में अमुन इस्तेहकाम खे हथी ॾियण लाइ डायलाग सफ़ारतकारी ऐं लाॻीतनि राब्तनि जी अहमियत ते ज़ोर भरियो। पाकिस्तान जे परॾेही आफ़िस पारां एक्स ते पोस्ट कयल बयान मूजिबि ॿिन्ही अॻुवाणनि बितरफ़ा राब्ता बरक़रार रखण ऐं मुख़्तलिफ़ मामलनि ते मुशावरत जारी रखण ते इतफ़ाक़ु कयो।

0: ईरान जा शर्त पूरा थियण ताईं हर बोस लंघ बंदि रहंदो। ईरान ॻाल्हियुनि जे उन दौर में वापसि न वेंदो जेको जंग खां अॻु हो। ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई जो बयान। मोहसिन रज़ाई चयो त ईरान तकरार जे निबेरे लाइ 7 शर्त पेश कया आहिनि। उहे शर्त टियाकड़ी कंदड़ पाकिस्तान ऐं कतर वटि लिखत में मौजूदु आहिनि। शर्त पूरा थियण ताईं न ॻाल्हियूं थींदियूं, न ई हरमोस खोलियो वेंदो। खिते जे मुल्कनि ईरानी जहाज़नि खे अचवञ जी इजाज़त न ॾिए ऐं हुननि जी हवाई अॾनि तां बि जहाज़ न उॾी सघंदा। ईरानी फ़ौज पहिरियों भेरो पंहिंजे मिज़ाइल खे अमरीकी सामूंडी ॿेड़े US यार्ड जे वॉशिंगटन मथां उॾाइण जे क़ाबिल थी वई आहे।
1: पुलिस और अमनो अमान जो है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद वो सब्जेक्ट सूबाई सब्जेक्ट है, मगर सूबे मादर पेदर आज़ाद नहीं हैं। उनके पास एब्सोल्यूट इख्तियार नहीं है कि वो कोई भी कानून साजी कर सकें। अगर सिंध अपनी नेवी बनाना चाहे तो वो नहीं बना सकता, अगर पंजाब अपनी रेलवे बनाना चाहे तो नहीं बना सकता, अगर बलूचिस्तान अपनी फौज बनाना चाहे तो वो फौज नहीं, उसके लिए कानून साजी नहीं कर सकता। इसी तरह पुलिस में और जो PSP रूल्स हैं आप उसको ओवर राइट नहीं कर सकते।
0: खैबर पख्तूनख्वा की सरकार पुलिस जो ढांचो तब्दील करे न थी सके। सूबा पंहिंजी नेवी फ़ौज या रेलवे ठाहे नथा सघनि। KP जो वॾो वज़ीर पुलिस जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह करे रहियो आहे। खेसि PSP रूल्स तब्दील करण जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। घरू मामलनि वारे ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ते तलाल चौधरी चयो त सूबा कंहिं बि सूरत में मादरे पदर आज़ादु न आहिनि। वॾो वज़ीर सुहेल आफ़रीदी चवे थो त सदन वज़ीर अॻुवा थी रहिया आहिनि, एॾा बेवस आहिनि त हुकूमत खे चुंबड़िया छो पिया आहिनि। सुहेल आफ़रीदी रुॻो ड्रामा करे रहियो आहे। इस्लामाबाद ईंदड़ वेंदड़ 125 रस्तनि मां हिकु बि रस्तो बंदि न कयो वियो आहे। इस्लामाबाद ते चढ़ाई लाइ केरु आयो त इस्लामाबाद हाईकोर्ट जे फ़ैसिले जी रोशनी में कैसे मुंहुं ॾिनो वेंदो।

पाकिस्तान जे अफगानिस्तान ते ड्रोन ऐं मिज़ाइल हमला सुद समाज जे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त पाकिस्तान दिफ़ा जो हक़ इस्तेमालु कंदे अफ़गानिस्तान में 10 हंधनि ते ड्रोन ऐं मिज़ाइल हमला कया। हमलनि में उन्हनि हंधनि खे निशानो बणायो वियो जिते ड्रोन लॉन्च करण ऐं ज़खीरो करण लाइ इस्तेमालु कया विया हुआ। अता तारड़ 23 सेप्टेम्बर ते अफ़गान सरज़मीन तां पाकिस्तान ते ड्रोन हमलनि जी मज़म्मत कंदे चयो त मुल्की सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तियारी जी भञकड़ी कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कई वेंदी। अता तारड़ चयो त अफ़गान सरज़मीन मां फायर कयल ड्रोन हदफ़नि ते पहुचण खां अॻु ई केरा तबाह कया विया। अफ़गान सरज़मीन तां कयल ड्रोन हमले खे मुकमिल तौरु नाकाम बणाए पियो। उत्तर वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 8 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी फोर्सिस जी कार्रवाई में दहशतगर्दनि जा ठिकाणा मुकमिल तौर तबाह। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां गोला बारूद ऐं वॾे अंग में हथियार थिए। ख़ारिजी दहशतगर्दनि पारां सिक्योरिटी फोर्सिस खां बचण लाइ हिकु मस्जिद खे ढाल तौरु बणाइण जी कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सिस मस्जिद खे महफ़ूज़ रखंदे दहशतगर्दनि खे कामयाबी सां निशानो बणायो।

कराची जी तबाही जी जिम्मेवार एम क्यू आहे। लसानी फसाद कराए सॼे इंडस्ट्री खे तबाह कयो वियो। कराची में रत जूं नदियूं वहियूं आहिनि। एम क्यू वारा अॼु समूरो मलबो पंहिंजे बानी ते विझी रहिया आहिनि। एम क्यू एम खे हाणे बदमाशी करणु न ॾींदासीं। असां 9-0 न करे वेंदा हुआसीं त जीअं हू दहशतगर्दी जी सियासत छॾे ॾियनि। सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील अना मेमुण जी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमुण चयो त कराची में सिंधी, उर्दू, पश्तो ऐं बलोची ॻाल्हाईंदड़ सभु भाइर जीअं रहनि था। एम क्यू एम हिकु भेरो ॿीहर लसानी नफ़रतुनि खे हथी ॾियण जी कोशिशि करे रही आहे। सिंध सरकार के एम सी जो नालो तब्दील करे एस एम सी ऐं कराची जो नालो सिंधियाची रखी छॾे। के एम सी में मुलाज़मतुनि जो अंगु वधाए बहराड़ी जा माण्हू भर्ती करण जूं तयारियूं कई पियूं वञनि। सिंध जे इंतिज़ामी तक़सीम चाहियूं था। सिंध में 6 इंतिज़ामी यूनिट क़ाइमु कया वञनि। एम क्यू मगण फारूक सत्तार जी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार चयो त बलदियाती इदारनि जे रिटायर्ड मुलाज़मनि खे 10 सालनि खां पेंशन ऐं ॿिया हक़ न मिलिया आहिनि। सिंध हाई कोर्ट पहिरियों भेरो खेनि पेंशन ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। जमायत इस्लामी समेत सभिनी खे वोट ऐं नोट वठण वक़्तु कराची यादि अचे थो। इंतिज़ामी यूनिट्स जे मामले ते सभु सिंध जे वॾेरनि सां गॾु वञी बीहनि था। नून लीग जो डॉक्टर नजीब नकी आज़ाद कश्मीर जो 25वें सदर चूंडजी वियो। आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली जे इजलास में नए सदर जी चूंड लाइ पोलिंग थी। डॉक्टर नजीब नकी जी हिमायत में 32 वोट पिया। पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर 13 वोट हासिल करे सघियो। जसकम चेयरमैन सनान कुरैशी सिंध जे विरहाङे जी साज़िश ख़िलाफ़ 27 सेप्टेंबर ते एहतिजाज जो ऐलान करे छॾियो। मलीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सनान कुरैशी चयो त 27 सेप्टेंबर ते सिंध ऐं सिंधू दरिया जी सलामती लाइ दरिया जे किनारनि ते गॾु थी एहतिजाज कयो वेंदो। धरती धणी समुंड, दरिया, ज़मीनूं, बेला, जबल ऐं वसीला बचाइण लाइ रोडनि ते निकिरी ईंदा।

सिंध सरकार मंशात केसम में नामज़द अनमोल उर्फ पिंकी जी बरियत खिलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में अपील दाखिल कराए छी। अदालत फौरी बुधणी की इस्तदारत करे छी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ अनमोल उर्फ पिंकी संदस साथियों के मंशात के टिन केसन में बरी कर छो। अदालत बरियत खिलाफ़ सरकार की अपील से बुधणी ने जातल मुद्दे तुलतवी करी।

0: लाड़काने में गुजरियल ॾींहुं फायरिंग में ॿिनि भाइरनि समेत चार ॼणनि जे मारिजी वञण वारे वाक़िए जो केस दाख़िल। गुज़िरियल ॾींहुं लाहौर इमाले में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि जी कार ते फायरिंग में चार ॼणा मारिजी विया हुआ। ॻोठ मीरवा वासी ॿिनि मक़तूल भाइरनि जी अमड़ अरबाब खातू खोखर जी फरियाद ते दहशतगर्दी एक्ट तहत नव जवाबदारनि मथां केस दाख़िल। केस में अब्दुल क़ादिर ज़ीशान उर्फ़ होश मोहम्मद, इरफान काशिफ मुश्ताक शाहनवास, मोहम्मद अली अख़्तियार ऐं हिकड़े ॼातल जवाबदार नामज़द। मक़तूलनि जी अमड़ जो चवणो त धीउ नसीम ऐं भाजाई किरण जे क़तलु केस बाबति अदालत में ॿुधणी बाद वापसि वञी रहिया हुआसीं त हमिलो कयो वियो। जवाबदारनि फायरिंग करे पुटनि अलहबरायो मंसूर डेर अली शेर ऐं कार ड्राइवर ग़ुलाम मोहिद्दीन वंगड़े जो खे क़तलु कयो हो। ऐं तराई में मिल्कियत जे तकरार तां टिनि पुटनि मुबैना तौर पीउ खे क़तलु करे छॾियो। पुलिस मूजिबि 55 वरहनि जे मोहम्मद सिदीक मेमण खे संदसि पुटु जावेद नवीद ऐं वहीद मेमण क़तलु कयो, फ़रार थी विया। मक़तूल जो लाश इस्पताल मुंतकिल। पुलिस मूजिबि जवाबदार पंहिंजे पीउ खे मिल्कियत खपाइण लाइ मजबूर करे रहिया हुआ। इनकार करण ते टिन्ही पुटनि लोही चीकुनि सां मथसि वार करे खेसि क़तलु कयो। ऐं नाज़र न्यूज़ नक ताईं जूं ख़बरूं हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक। ब्रेक खां पोइ तव्हां प्रोग्राम ॾिसी सघंदा व्यूज़ टाइम। ॾिसंदा रहो टाइम न्यूज़।
1: क्या आपके बाल कमजोर, बेजान और टूटने लगे हैं? अब हल है मोहेयर शैम्पू बाय सिग्नेचर ब्यूटी। 90% कुदरती जड़ी बूटियों और अज्जा से तैयार करता सल्फेट फ्री फॉर्मूला जो बालों को नुकसान नहीं पहुँचा।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

यमनी हुसैन जे सऊदी शहर ताइफ ऐं यंबा ते हमलनि जी कोशिश नाकाम। हुसैन पारां फायर कयल छह बैलिस्टिक मिज़ाइल फिज़ा में ई तबाह कया विया। सऊदी इतिहाद मूजिब यमन मां हुसैन पारां फायर कयल छह मिज़ाइल जी निशानदेही ते कंहिं फिज़ा में ई तबाह कयो वियो। तुर्की अलमालिकी चयो आहे त मिज़ाइल सां कंहिं बि क़िस्म जो नुक़सान न थियो। सऊदी तेल कंपनी आरामको जे सरबराह चयो आहे त हुसैन जे हमलनि सबबि मुतासिर थियल तेल पाइप लाइन्स जी मरम्मत वारो कम बि जल्द मुकमल थी वेंदो।

पाकिस्तान जो अग्रही कंदड़ अफ़गान तालिबान रजीम के मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान जा अफगानिस्तान में 10 हंधनि ते फजाई ऐं ड्रोन हमला। पाकिस्तान ते हमले लाइ इस्तेमाल थियल थाक ऐं ड्रोन जा ज़खीरा तबाह। सूद समा वारे फाकी वज़ीर ताला तार चयो आहे त पाकिस्तान अफ़गान सरज़मीन तां ड्रोन हमलनि बाद जवाबी कार्रवाई कई आहे। पाकिस्तान ते हमले लाइ इस्तेमाल थियल ड्रोन लॉन्चर्स ऐं ज़खीरनि खे कामयाबी सां निशानो बणाए तबाह कयो वियो आहे।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी नए नौजवानों जो मुलाकातूं। वज़ीर-ए-आज़म नौजवानों का मुख्तलिफ़ शोबन बाबत तजवीज़ों घुरे वरतियों। शहबाज शरीफ चयो तो बासल नौजवान ते सलाहियतन ते फ़ख्र है। नौजवान ही पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आहिन। पक है नौजवान ही पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कंदा, हुकूमत सहूलतूं ॾींदी। सिंध जो विरागो कें भी सूरत में कबूल ना है। टीवी सर्वे से को फर्क न पवन। एम क्यूम बीह लसानियत के हवा दे रही है। पाकिस्तान के लसानियत हवाले थियण न दिनों वो। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमण है तो कराची में इंडस्ट्री एम क्यूम के हड़ताल सबब बंद थे। कराची ऑपरेशन जो हिस्सों रहंदड़ एसएचओस के चूंडे चूंडे मारे वो। एम क्यूम के हाँ बीहर बदमाशी वारी सियासत करण की इजाजत न दिनी वी। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां के पी जी तरमीमी पुलिस एक्ट के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करण जो ऐलान। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त वफ़ाक़ वटि पुलिस एक्ट बाबति घणा ऑप्शन मौजूदु आहिनि। एक्ट सुप्रीम कोर्ट में बि चैलेंज थींदो। ममलकती वज़ीर बैरिस्टर अकील चयो त के पी हुकूमत पुलिस खे बि सियासी बणाइण चाहे थी। सूबा अहिड़े क़िस्म जो को बि क़दम नथा खणी सघनि। पी एस पी ऑफिसरनि जी मुक़ररी ते सूबा पाण मुरादो अमल नथा करे सघनि। जे पी जे वॾे वज़ीर पुलिस एक्ट में तरमीम ते वफ़ाक़ी हुकूमत जी तनक़ीद खे रद्द करे छॾियो। सुहेल आफरीदी चयो त पुलिस जो सियासी इस्तेमालु थींदो त सूबाई हुकूमत क़दम खणंदी। पुलिस जो ध्यानु दहशतगर्दीअ तां हटाए सियासी जमात तरफ़ करणु न ॾींदासीं। पुलिस एक्ट में वधीक बि तरमीमूं आणे सघजनि थियूं।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। हम तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त। वो कब किसी के लिए रुका है, झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन। कहाँ सुना, माफ कीजिएगा, शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप, जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर, गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल, मैं इसमत चुकाई, कैसे किस्मत खुल आई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट, जिवे बादशाह दे बैद दे मार्शल मैड, मेरा इंस्टिंक्ट एनिमलिस्टिक, मैड मैजिशियन या मैथमेटिशियन, आई नेवर टेक सेकंड पोजीशन, आई एम गेटिंग बैलिस्टिक, कैटेगरिज्मिक, बिल्कुल असली, देखो मेटिकुलसली, लव्स मेरे मेडिसिनल से, लव किया मैंने कलम से, सच बोला मैंने कसम से, रंग देखो कैसे बदलते, दिखते हैं सबके, करते कब से, बातें पक्की, बातें कच्चे, I've had enough of it, but I keep going, got no option but to keep flowing, keep the toxic out of my zone, tuck the sheep up knee off of my throne, but before I gotta go, let me tell you this, one thing I need you to know, if you ever need a friend, you can call my

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: man. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White H Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White H Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White H Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध

துப்பம்.

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अमरीकी दौरे ते मौजूद चीनी सदर शी जिनपिंग जी व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात बितरफ लागापान खत्े की सूरतहाल समेत मुख्तलिफ मामलन ते गालियों। सदर ट्रंप है चीन से व्यापारी लागापन के वधिक मजबूत करने लाए पुरजम आयु। चीनी सदर आदर भाव से सदर ट्रंप जहा थोरा मनिया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान जो अगराई कंदड़ अफगान तालिबान रजीम के मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान जा अफगानिस्तान में 10 हंधन ते फजाई ए ड्रोन हमला। पाकिस्तान ते हमले लाए इस्तेमाल थियल थाक ए ड्रोन जा जखीरा तबाह। असद समा वारे फाकी वजीर अताउल्ला तरण चयो आहे त पाकिस्तान अफगान सरजमीन ता ड्रोन हमलन बाद जवाबी कार्रवाई कई है। पाकिस्तान ते हमले लाए इस्तेमाल थियल ड्रोन लॉन्चर्स ए जखीरन के कामयाबी सा निशानो बनाए तबाह कयो वियो है।

अमेरिका जे दौरे ते पहुतल चीनी सदर शी जिनपिंग जी व्हाइट हाउस ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां मुलाकात। आलमी सूरतहाल समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। अमेरिकी सदर चयो आहे त खेसि अमेरिका ऐं चीन जे लाॻापन ते फ़ख़्रु आहे। हुन चीनी सदर सां इंतिहाई शानदार दोस्ती क़ाइम करे वरिती आहे। मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही मुल्कनि जे मसइलनि ते ज़बरदस्त गभराई थी। चीन सां वापारी लाॻाप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ सां न्यूयॉर्क में ईरानी सदर मसूद पेशकियान जी मुलाक़ात बि तरफ़ लाॻापन ऐं ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। मुलाक़ात दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़दार दिफ़ा वारो वज़ीर ख़्वाजा आसिफ ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी ऐं ॿिया बि मौजूदु। शहबाज़ शरीफ चयो आहे त अमरीका ईरान तकरार ख़तमु करण लाइ पुरउमेद आहियूं। ख़िते में अमन जे क़याम वारियूं कोशिशूं जारी आहिनि। समूरो ध्यानु ईरान अमरीका जंग जे ख़ात्मे ते आहे।

शर्त पूरा थियण ताईं नाबना हरमुस खुलंदो नई ॻाल्हियूं थींदियूं। ईरान जो वाज़ ऐलान, सदर मसूद पेज़ेशकियान चयो आहे त ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं, धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। ईरानी सुप्रीम लीडर जे सलाहकार यहया रहीम सफ़ी चयो आहे त अमरीका या इसराइल ॿीहर हमिलो कयो त जंग हिंदी समुंड ताईं पखिड़िजी वेंदी। माशी पाबंदियुनि ईरान खे तबाह करे छॾियो आहे, वधीक पाबंदियूं बि तेहरान खे ख़तमु करे छॾींदियूं। अमरीका जे नाणे वारे वज़ीर स्कॉट बीसेंट चयो आहे त ईरानी जहाज़नि जूं आलमी उॾामूं ख़तमु थी वियूं आहिनि। हाणे को बि मुल्क ईरानी जहाज़नि खे लैंडिंग करणु न ॾेई रहियो आहे। पाबंदियुनि जो मक़सदु ईरान में बग़ावत पैदा करणु आहे। यमनी हुसियन जे सऊदी शहर ताइफ ऐं यम्बा ते हमलनि जी कोशिश नाकाम। हुसियन पारां फायर कयल 6 बैलिस्टिक मिसाइल फिज़ा में ई तबाह कया विया। सऊदी इतिहाद मूजिब यमन मां हुसियन पारां फायर कयल 6 मिसाइल जी निशानदेही ते खेन फिज़ा में ई तबाह कयो वियो। तुर्की अल मालकी चयो आहे त मिसाइल सां कंहिं बि क़िस्म जो नुक़सान नाहे थियो। सऊदी तेल कंपनी आरामको जे सरबराह चयो आहे त हुसियन जे हमलनि सबबि मुतासिर थियल तेल पाइपलाइन जी मरम्मत वारो कम बि जल्द मुकमल थी वेंदो। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास अमरीका खां लागू पाबंदियूं फौरी तौर वापसि वठण जो मुतालबो करे छॾियो। फलस्तीनी सदर चयो आहे त इसराइल फलस्तीन जे अवाम जी नसल कुशी करे रहियो आहे। हमला अञा ताईं जारी आहिनि। फलस्तीनियुनि जी ज़बरदस्ती, बेदख़ली ऐं नसल कुशी वारी जंग शदीद थींदी पई वञे। पालारियल ओलन जे किनारे में गैर क़ानूनी कब्ज़ो वधायो पियो वञे। गज़ा जो अवाम क़त्ले आम, तबाही ऐं बुख खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। फलस्तीन खे जनरल असेंबली इजलास में शिरकत खां रोकणु क़बूल करणु जोॻो नाहे। गज़ा जूं हालतूं संगीन आहिनि। फलस्तीनी अवाम ते बमबारी ऐं नसल कुशी थी रही आहे। गज़ा जे अवाम खे पंहिंजे ई घर में शहीद कयो पियो वञे। मालदीव जे स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला पारां जी एच क्यू जो दौरो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां मुलाकात। ISPR मूजिबि मुलाकात दौरान बितरफ़नि लाॻापन इलाक़ई अमन ऐं सलामती ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो त पाकिस्तान मालदीव सां लाॻापन खे अहमियत ॾियूं था। लाॻापा वधीक मज़बूत बणाइण लाइ पुरज़म आहियूं। मालदीव जे स्पीकर पाकिस्तान जे इलाक़ाई अमन ऐं इस्तक़ाम लाइ किरदार जी साराह कई। सिंध जो विरागो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। TV सर्वे सां को फ़र्क़ु न पवंदो। MQM ॿीहर लसानियत खे हवा ॾेई रही आहे। पाकिस्तान खे लसानियत हवाले थियणु न ॾिनो वेंदो। सीनियर वज़ीर शजी ला मेमण चयो आहे त कराची में इंडस्ट्री MQM जी हड़तालुनि सबबि बंदि थी। कराची ऑपरेशन जो हिसो रहंदड़ SHOs खे चूंडे चूंडे मारियो वियो। MQM खे हाणे ॿीहर बदमाशी वारी सियासत करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी।

इस्लामाबाद इंतजामिया शहर के कंटेनर रखी सील कर छो। इस्लामाबाद में दाखिल थे कोशिश करे सोगो करने लाए जार भी विछाया वह पंजाब ए खैबर पख्तूनख्वा का ईंदड़ वींदड़ रस्ता बंद। ट्रैफिक की रवानी सख्त मुतासिर मखसूस रस्तन से भी गाड़ियों जो कतारू लगल। आईजी पंजाब है कानून हथ में खड़ंदड़ से रियायत न थन्दी। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ जिलों में रेंजर्स के मुकर करण की मंजूरी दे छी। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ए पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त से वफाकी घरू वजारत नोटिफिकेशन जारी कर छो। रेंजर्स के जत्थन के हमलन से कार्रवाई का मुकम्मल अख्तियार डना व। वफाकी हुकूमत पारा खैबर पख्तूनख्वा के तरमीमी पुलिस एक्ट के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ममलकती वजीर तलाल चौधरी है वफाक वट पुलिस एक्ट बाबत घना ऑप्शन मौजूद हैं। एक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज थो। ममलकती वजीर बैरिस्टर अकील केपी हुकूमत पुलिस के भी सियासी बनाने चाहे थी। सूबा अड़े किस्म जो को भी कदम नता खी सन। पीएसपी ऑफिसर की मुकर्री से सूबा पान मुरादो अमल नता कर सन। खैबर पख्तूनख्वा के वड़े वजीर पुलिस एक्ट में तरमीम से वफाकी हुकूमत की तनकीद के रद्द कर छो। शहल आफरीदी पुलिस जो सियासी इस्तेमाल थो तो सूबाई हुकूमत कदम खड़ी। पुलिस जो ध्यान दहशतगर्दी तां हटाए सियासी जमात तरफ करण न डींदी। पुलिस एक्ट में वधिक भी तरमीमू आने सकजन थ। फोर्सेज जो दहशतगर्द खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई जारी। उत्तर वजिस्तान में फोर्सेज के ऑपरेशन दौरान 8 खारजी दहशतगर्द मारजी वह। सिक्योरिटी जरिये मूजिब फोर्सेज कार्रवाई दौरान दहशतगर्द के थाकन के कामयाबी से तबाह कर हथियार हथ कया वह। मस्तुंग में मारजी वल दहशतगर्द में अफगान शहरी शामिल निकता। सिक्योरिटी जरिये मूजिब मस्तुंग में मारजी वल एक दहशतगर्द खलील अहमद वटा अफगान कार्ड ए बे दहशतगर्द जुल्फकार उर्फ अबू उमर वटा अफगान गुजे इदारे डीआई जो कार्ड मिलो। नून लीग के डॉक्टर नजीब नकी आजाद कश्मीर के नए सदर तौर हल्फ खी वरतो। आजाद कश्मीर के चीफ जस्टिस डॉक्टर नजीब नकी के पंजे सदर तौर हल्फ खणायो। डॉक्टर नजीब नकी 45 वोट हासिल करे आजाद कश्मीर जो 25 सदर चूंजी वो। पीपल्स पार्टी जो चौधरी लतीफ अकबर 13 वोट हासिल कर सकता।

0: ये देखे, ये लोगे, ये देखे, ये देखे। ये देखे। हे भाव मानू ही ने, ये दिसो, ये ता दिसो था मानू ही ने, मथा भितू टपी आया है ने। ये दिसो। हाँ ये दिसो। हाँ ये मानू है ने। हाँ ये बुटू बधी आया है ये नकाब पोश।
1: नकाब पोश आया ने जिसो।
0: यो को भी तरीको ना है। मुझे भाई यो को भी तरीको ना है। यो छाई यो सुटो कमा। हे हे दिसो हथियार। हे दिसो हथियार। हे मानू दिसो। हे राज जो चार था थे ना। हे से नंदा मासूम बार है ना। हे इन्हन जो तरीको आ। हे दिसो।
2: बदअमनी बाबत खबरों चौथो हलाई दादू पुलिस जी पुलिस गर्दे बदअमनी बाबत खबरों हलाण ते राथण में केटीएन न्यूज रिपोर्टर मुजफ्फर गोरड़ के घर से रात की ऊंदाई में पुलिस की का चादर चार दीवारी जो तकदस पमार न्याणियन की तस्लील घर जा दर भी टोड़े छाया राथण दादू बाडर टोकरी नौशेरो फिरोज और बेन शहर में कलम धड़ियन जो एहतजाज जिम्मेवार पुलिस अहलकार खिलाफ केस दाखिल कर कार्रवाई करने जो मुतालबो सूबाई घर वजीर जल हसन अंजार साफी के घर से पुलिस बिना जवाब चढ़ाई जो नोटिस वरतो एसएसपी दादू के वाक्य की अंतरी जांच कर रिपोर्ट देने की हिदायत जल अंजार है तो जिम्मेवार पुलिस अहलकार खिलाफ कार्रवाई कई वेंदी टंडोलयार में औकाफ खाते जो जमीनों बेना तौर पासन हवाले नेप पारा जांच शुरू औकाफ खातों नेप के
3: विक्रम साहू था
2: औकाफ के मुख्तलिफ वक्तन ते खत लिखण बावजूद औकाफ अख्तियारन जमीनन जो रिकॉर्ड नेप हवाले न कयो नेप जे खतन में चयो वियो आहे त शिकायतूं आहिनि त टंडोलयार में औकाफ जूं ज़रई ज़मीनूं गैर क़ानूनी तौर ते मुख़्तलिफ़ माण्हुनि हवाले कयूं वयूं आहिनि रिकॉर्ड फराहम कयो वञे ज़रियुनि मूजिब नेप कराची पारां पहिरीं 31 अगस्त ताईं रिकॉर्ड तलब कयो वियो ॿीहर ख़त लिखी 21 सेप्टेम्बर ताईं मोहलत ॾिनी वई पर रिकॉर्ड जांच टीम हवाले न थियो ज़रियुनि मूजिब सिंध में औकाफ खाते जूं 1000 एकड़ ज़रई ज़मीनूं बासन हवाले थियल आहिनि कलोई वेझो ट्रॉलर जो कोस्टर के टक्कर 8 ॼणा फोत 6 ज़ख्मी बेलोड़ो स्टॉप वेझो कोस्टर ट्रॉलर में टक्कर थियो फोतियन जा भड़ ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News
5: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
6: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
5: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ रही न दूर तड़पायो दिल जी गाल करनी आ रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐ सचाई लबन ते मुर्का विखरिल दिलन में आ बे आई चाहत जा चंग वजायो दिल जी गाल करनी आ चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ कराची का कश्मीर किंजर का कारुंजर ताई श्रेणी सिंधवासन के आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल पवे

प्रोग्राम दिलजी गाल सा गड आऊं आया आबिद चौहान आवां बुधी रहया GAFM नेटवर्क GAFM नेटवर्क दिल जी गाल जे बुधंदड़न सबनी मानायतन महबूबन दिलरुबा दोस्तन प्रिय प्यारन के वेलकम भलीकार खुशामदी

वस में ना है, वस में ना है जो मां विसारे छड्यां। वस में ना है जो मां विसारे छड्यां, रात ना है जो मां गुजारे छड्यां। वस में ना है जो मां विसारे छड्यां, रात ना है जो मां गुजारे छड्यां। दर्द आहिन त दिल दुखाइन था, दर्द आहिन त दिल दुखाइन था, पखी हुजन त मां उडारे छड्यां। वस में ना है जो मां विसारे छड्यां। अज इन चोट चौसिटे से शुरुआत कई से असाजे एक प्री प्यारे दिलरुबा दिलबर दोस्त महबूब साईं जो फरमान हुयो। वो फरमान अखियन ते हुकुम जी तामील कंदे असा साईं शहजाद अहमद मलिक साहब जो ये चौसिटो चूंड प्रोग्राम में शामिल कई से। प्रोग्राम में बाकायदगी सा गज़ल ऐं गीत भी शामिल कंदासे ऐं खोड़ सारनि खूबसूरत महबूब असांजे सिंध जे नाले वारनि शायरनि जी शायरी पिणु शामिल कंदासीं।

तुझो मुर्की दिसण मुखे प्यारो लगो, तुझो मुर्की दिसण मुखे प्यारो लगो, केडो दिलकश हसी ही नजारो लगो। तुझो मुर्की दिसण मुखे प्यारो लगो, केडो दिलकश हसी ही नजारो लगो। तुझे मुर्कण सा खुशबू थी वही आ फिजा, तुझे मुर्कण सा खुशबू थी वही आ फिजा, खुशबू खुशबू आ जग मुखे सारो लगो, तुझो मुर्की दिसण मुखे प्यारो लगो। तुझे कन में तो पियो टिमटिमाए ईए, तुझे कन में तो पियो टिमटिमाए ईए, वालो आकाश जो कोई तारो लगो, तुझो मुर्की दिसण मुखे प्यारो लगो, खिरो दिलकश हसी ही नजारो लगो।

सभ जे साम्हूं सॼई अयाबित चई, सभ जे साम्हूं सॼई अयाबित चई, मुंहिंजो दिलबर मूंखे दिलवारो लॻो, तुंहिंजो मुर्की ॾिसणु मूंखे प्यारो लॻो, कहिड़ो दिलकश हसीं ही नज़ारो लॻो।

ऐं इहे सिटूं मूं नाचीस अब चौहान जूं हुयूं। असां इन सां गॾु हिकिड़ो ख़ूबसूरत ट्रैक शामिलु कंदासीं प्रोग्राम में। अचो त गॾिजी हीअ ख़ूबसूरत ट्रैक एंजॉय कयूं।

अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक

0: आसान व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अयाज आहे विथी तोखे त हुन जी ॻाल्हि गाए वठ अयाज आहे विथी तोखे त हुन जी ॻाल्हि गाए वठ वजे जीअं रोज़ शहनाई चवां थो तूं त तूं आहीं न ॿोली बि अचे काई चवां थो तूं त तूं आहीं इहा ई वात वाई हूं चवां थो तूं त तूं तूं आहीं वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गाल संग गडाऊ है आबिद चौहान है वहां बुधी रहा है जी एफ एम नेटवर्क कतन कर मोड़िया जने भांगो ट्यों शेख अयाज जी खूबसूरत गजल अवां सबनी महबूबन जे नाव कई से स्पेशल एन गजल जो डेडिकेशन एन गजल जो अर्पण वो असाजे यार प्रिय प्यारे दोस्त उस्ताद ज़ीशान सुमरो जे नाव कजे थो जै या चूंड गजल पढ़ने लाए मुखे मोकलियो दोस्तों जी शिकायत हुई तो कॉल्स नंबर असां घट अनाउंस कंदा आहियूं सो अज उथंदे ही प्रोग्राम में असां नंबर अनाउंस करण वञूं था असां नंबर नोट करे वठो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000111348

0: Minha o del bal. चाबीअ बिना जीअं तालो आहे, चाबी बिना जीअं तालो आहे, दर ते टंगियल आ ईअं ओ दिलबर तोखे विसारियां कीअं ओ दिलबर। हेकर मोटी आ तू सनम, हेकर मोटी आ तू सनम, जीअं चवंदे कंदुसि तीअं ओ दिलबर तोखे विसारियां कीअं ओ दिलबर। इश्क कयो मजबूर आबिद, इश्क कयो मजबूर आबिद, न तो हुआ से पहरियां शींह ओ दिलबर तोखे विसारियां कीअं ओ दिलबर। तोसां आहे नीह ओ दिलबर, आऊं उञायल थर ऐं काछो, तूं सावण जो मींह ओ दिलबर तोखे विसारियां कीअं ओ दिलबर। कॉल शामिल कंदासे प्रोग्राम में, अस्सलाम वालेकुम, खैर साईं किथां खां?
1: वालेकुम अस्सलाम, मुस्तफा मोहम्मद कासिम
0: जी। सोणा साईं,
1: फ्लोर गुडो खां मोहम्मद कासिम।
0: आवाज अवां जो कुछ घट पियो थे
1: साईं। फ्लोर मोरी गुडो खां मोहम्मद कासिम।
0: मोहम्मद कासिम साहब गुडो खां वेलकम भलीकार।
1: फ्लोर मोरी गुडो गुडो
0: फ्लोर फ्लोर मोरी
1: आ गुडो साईं करे मला आयो
0: न मुझो अचन कोन थियो आ।
1: अच्छा, मीरपुर खां
0: दिल्ली में अचो। हाँ, इन पासे तमाम घट अचण थियो आहे। इहा पटी हीअं अलॻि सां हीअं बस वञणु थींदो आहे कराची ताईं, त पोइ जेको ट्रेक सिधो आयो उतां ई गुज़रिया वेंदो। इहो त सपनो आहे, ड्रीम आहे, ड्रीम आहे, बिल्कुलु ड्रीम आहे। अवां घुरायो कॾहिं ईंदासीं पहिरां?
1: मुंहिंजो राति जी काल जेका हुई मस्तु लॻण लॻण थी वई ऐं वरी काल वरिती वियो। पोइ प्रोग्राम बि तव्हांजो जेको आहे मुख़्तसर लॻो असांखे, माना
0: जेका शइ वधीक वणंदी आहे न चस ॾींदी
1: आहे। असल में उहो जेको कालर आयो हो ऐं तजवीज़ ॾिनी आहे उनते घणो कुझु अमल थींदो आहे।
0: जी जी जी जी जी कोशिशि।

0: अच्छा पेंटिंग है
1: जी जी
0: हाँ बिल्कुल बाकायदगी सां जी तेरे शायरी बि तव्हां ॿुधायो पिया असांखे तमामु मज़ो पियो अचे
1: असल में कोशिशि इहा ई आहे त पर पोइ बि कुझु कमियूं कोतायूं उन दोस्त खे बि चवंदासीं साईं खे उहो मोहतरम असांजो नाले वारो शायर आहे
0: साईं असल में ॻाल्हि जेका हुई त कॉलर अचनि पिया नाले जे लाइ
1: जी
0: हाणे ॾिसो साईं तक़रीबन मूं 400 खां वधीक कॉल जेको आहे पंहिंजे प्रोग्राम में ट्राई करण जी कोशिशि कई आहे त मुंहिंजो अहिड़ो साल लॻे
1: जी
0: लेकिन हुनजे बावजूद बि साल जेका आहे सो फोन लॻी बरहाल प्रोग्राम ॿुधोसीं ऐं तव्हां जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं हुननि बि ॻाल्हियूं ॿुधियूं ॾाढी दिलि खे मतिलबु सुकून
1: थींदो बिल्कुलु मूं बि इहो ई अर्ज़ु रखियो त घटि में घटि यार कॉल न लॻे त ॻाल्हि ॿोल त बिल्कुलु ॿुधणु घुरिजे ऐं इहा ई उमेदु तवको अव्हां खां आहे त प्रोग्राम में शामिल कयो मुंहिंजा यकीन कंदो अव्हां ॾिसो कोन पिया मूंखे फ़क़ति ॿुधो पिया मुंहिंजा ईअं हथ जुड़ियल आहिनि जेसीं असांखे वॾनि खां मिली असां बि इहो ई चाहींदासीं त सिंध में इहा रस्म बरक़रार रहे पंहिंजो कल्चर आहे ऐं असांखे फ़ख़्रु आहे पंहिंजे सकाफ़त ते
0: साईं हिकिड़ो कॉलर कुझु लॻो पहिरियां आयो हुन जेको तव्हांखे चयो पिया आशा परवेज जे आवाज़ में आयो ऐं तोर केॾो हवा लॻायो आहे
1: जी
0: ऐं हिकिड़ो माण्हू अचिणो आहे तमामु बहितरीन वाॻी इहो गीत हिन में
1: वक़्त वञी रहियो आहे असांजो ब्रेक डाउन न्यूज़ ॾांहुं सो कॉल काफ़ी ड्रिगी थी वई मां हिन लाइ बि
0: सलाम आहिनि
1: जी जी
0: कॉलर जेके आहिनि वरितो ईअं कॉलर मुख़्तसर टाइम थोरो
1: ॾींदासीं दुआऊं अलाह जा आसान अवां ॿुधायो ख़ुशि आहियो कमी महसूस कई सो तंहिं करे अॼु उथंदे ई अनाउंस कयोसीं अञा बि कबो ॿीहर बि कबो बिल्कुलु प्रोग्राम कॾहिं खां ॿुधो पिया प्रोग्राम असांजो वाह वाह वाह वाह अकेला ॿुधो पिया दोस्तनि खे बि शेयर कयो पिया ॿुधायो न अहिड़ी ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं हिननि प्यारनि माण्हुनि जूं फोनूं कॉलूं ऐं अहिड़ियूं मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं दोस्तनि खे बि मां भाइटो आहियां चाचो आहे मुंहिंजो साईं साईं ब्रेक जो वक़्तु थी वियो आहे न्यूज़ जो बि ऐं अवां को सलाम को नियापो को दुआ शामिल करणु चाहींदो बिस्मिल्लाह लाजवाब लाजवाब वाह साईं वाह वॾी महिरबानी साईं प्रोग्राम में शामिल थियण लाइ कुर्ब लख लाइक थैंक्यू
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

इस्लामाबाद इंतजामिया शहर के कंटेनर रखे सील करे छो। इस्लामाबाद में दाखिल करण की कोशिश कर सोगो करण लाए चार पी बिछाया व्या। पंजाब ए केपी खां ईंदड़ वेंदड़ रस्ता बंद, ट्रैफिक की रवानी सख्त मुतासिर। मखसूस रस्तन से भी गाडियन जो कतारू लगल। आईजी पंजाब है कानून हथ में खड़ंदड़ सा रियायत नी। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ जिलों में रेंजर्स के मुकर करण की मंजूरी दई छी। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ए पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त वफाकी घर वजारत नोटिफिकेशन जारी कर छो। रेंजर्स के जत्थन के हमलन से कार्रवाई का मुकम्मल अख्तियार दिना व्या। केपी के वे वजीर पुलिस एक्ट में तरमीम से वफाकी हुकूमत की तनकीद के रद्द कर छो। सोहेल आफरीदी पुलिस जो सियासी इस्तेमाल सूबाई हुकूमत कदम खड़ी। पुलिस जो ध्यान दहशतगर्दी तक हटाए सियासी जमात तरफ करण नींदी। पुलिस एक्ट में भी तरमीमू आने सकजन थी।

फोर्सेज जो दहशत गर्दों के खिलाफ केपी में कार्रवाई जारी। उत्तर वजिस्तान में फोर्सेज से ऑपरेशन दौरान 8 खारजी दहशत गर्द मारजी वा। सिक्योरिटी जरिए मूजिब फोर्सेज कार्रवाई दौरान दहशत गर्दन के ताकत के कामयाबी से तबाह कर हथियार हथ कया वा। मस्तूंग में मारजी वियल दहशत गर्दन में अफगान शहरी शामिल निकता। सिक्योरिटी जरिए मूजिब मस्तूंग में मारजी वियल एक दहशतगर्द खलील अहमद वटा अफगान कार्ड ए दहशतगर्द जुल्फकार उर्फ अबू उमर वटा अफगान गुजे इदारे के डी आई जो कार्ड मिलो।

0: थे, ये लोगे, ये देखे, ये देखे। ये देखे।
1: किरण
0: हे भाव मानू ही ने ए दिसो ए ता दिसो था मानू ही ने मथा भितू टपी आया है ने ए दिसो हां हे दिसो भाई मानू है ने
2: मोबाइल
0: ए बुटू बधी आया है ये नकाबपोश
3: नकाबपोश आया ने दिसो
0: यो यो को भी तरीको ना है मुझे भाई यो को भी तरीको ना है
2: मोबाइल
0: यो छाई यो सुठो कमा हे हे दिसो हथियार हे दिसो हथियार हे मानू दिसो हे राज चार था थे ना हे से नंडा मासूम बार है ना हे इनन जो तरीको आ हे दिसो

थो हलाई दादू पुलिस धाड़ियल बणजी वही कलम धणी के घर से का राधण में केटीएन न्यूज के रिपोर्टर मुजफ्फर गोरण के घर से रात जीवंदाई में पुलिस की का चादर चार दीवारी जो तकदस पमाल न्याणियों की तस्लील घर जहा दर भी तोड़े छाया राधण दादू बाट डोकरी नौशरो फिरोज और बेन शहर में कलम धड़ियन एहतजाज जिम्मेवार पुलिस अहलकार खिलाफ केस दाखिल कर कार्रवाई करने मुतालबो सूबाई गुरू वजीर जालसार साफी के घर से पुलिस बिना जवाब चढ़ाई जो नोटिस वरतो एसएसपी दादू के वाक्य की अणधुरी जांच कर रिपोर्ट देने की हिदायत कलोई वेझो टालर जो कोस्टर के टक्कर पंज जणा फोत 13 जख्मी कोस्टर ए टालर में टक्कर थो फोतियन जहा बड़ ए जख्मी अस्पताल मुंतकिल